आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजे हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
4: People to people connect.
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तुम्हारी शरण में आए हैं भगवन, इस भवसागर को तुम ही पार करा सकते हो।

बंदगी समर्पण में है, शुक्रगुजारी में है, कृतज्ञता में है। आइए दाता से करबद्ध प्रार्थना करें।

संसार सपने के समान है, क्षणिक क्षणभंगुर, पल में नष्ट हो जाने वाला। यहां किसी को भी अतिरिक्त मौका नहीं मिलता। जो समय जीवन के रूप में मिला है, भक्ति और परमार्थ में समर्पित कर दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ

सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: एक दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, राधा में ऐसा क्या है कि आप उसे प्रतिक्षण स्मरण करते रहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर बता दूंगा। एक बार श्री कृष्ण चादर ओढ़ कर लेट गए। रुक्मणी के पूछने पर कहा, मेरे सर में अतीव पीड़ा है। रुक्मणी ने घबराकर पूछा, इसकी औषधि क्या है? कृष्ण ने कहा, अपने चरणों की जरा सी धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। रुक्मणी ने कहा, ऐसा करने से तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने नारद को बुलाकर राधा के पास भेजा और राधा के चरणों की धूल मस्तक पर लेपन हेतु लाने के लिए कहा। राधा ने यह बात सुनकर तुरंत अपने पैरों की धूल नारद को दे दी। नारद ने पूछा, तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? राधा ने उत्तर दिया, यदि मेरे पैरों की धूल से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो तो मैं 70 जन्म तक भी नरक में जाने को तैयार हूं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। महात्मा गांधी ने कहा था, जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां अधीरता को स्थान नहीं मिलता। शुद्ध प्रेम देह का नहीं आत्मा का ही संभव है। देह का प्रेम विषय ही है। आत्म प्रेम को कोई बंधन नहीं।

0: परंतु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्यु पर्यंत वियोग रहे तो भी क्या हुआ। प्रेम तत्व संसार पर विजय करता है। समुद्र तल में स्थित चुंबक की चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है और सभी पटरों को अलग अलग कर देती है, फलतः जहाज समुद्र में डूब जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमात्मा के अगाध प्रेम में डूब जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार प्रेम के दो लक्षण हैं, इस बात का बोध होना कि जगत मिथ्या है तथा शरीर जो कि सभी को प्रिय होता है उसकी कुछ भी परवाह न करना। भाव कच्चे आम के समान है और प्रेम पके आम के तुल्य है। प्रेम भक्त के हाथ में एक रस्सी के समान है, उसी से वह ईश्वर को बांधकर अपने वश में करता है। भक्त की प्रेममय पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य उस पर कृपा करता है। सच्चा प्रेम सूर्य के समान आत्मा को विकसित कर देता है। मोह मन को पाले के समान ठिठुरा कर संकुचित कर डालता है। प्रेम का अर्थ है व्यवहार में अपने पड़ोसियों के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलते जुलते हैं, एकता और अभेदता का अनुभव करना। जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया वह कदापि ईश्वर अनुभव नहीं कर सकता। प्रेम मोह से भिन्न है, वह एकमात्र दैवी विधान है। विषय वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है। प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वहां काम है, जहां स्वार्थ नहीं होता प्रेम का वही साम्राज्य फलता फूलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं सुश्री विभा मिश्र से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, उससे पहले गीत की अगवानी के लिए चार पंक्तियां देखिएगा।

सुश्री विभा मिश्र के स्वर में आप सुन रहे थे उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। इसी के साथ काव्य धारा संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जी

0: क्यों तिलहन अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं माइग्रेन का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी।
2: माइग्रेन सिर में होने वाला ऐसा रोग है जिसमें रोगी के सिर के आधे भाग में दर्द होता है। इस रोग के हो जाने पर जो व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है कि वह अपना रूटीन का काम भी ठीक से नहीं कर पाता, उसे ऐसा लगता है कि उसके सिर पर कोई बुरी तरह मुक्के मार रहा है, जी मिचलाता है, उल्टी आने को मन करता है और उसे कोई भी आवाज, गंध या रोशनी अच्छी नहीं लगती। यद्यपि हम कहते हैं कि यह सिर दर्द आधे हिस्से में ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर के दोनों हिस्सों में दर्द मिलता है। माइग्रेन का जो हमला है वो किसी भी आयु में हो सकता है। बच्चे भी यदा कदा इस रोग के शिकार हो जाते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में मिलने वाले इसके रोगियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और 35 से 45 वर्ष की आयु में इसके रोगी सबसे अधिक मिलते हैं। और एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे विश्व में मिलने वाले सिर दर्द के रोगियों में से 10% से अधिक रोगी माइग्रेन के ही होते हैं। माइग्रेन के अनेक कारण है जी, नींद पूरी ना होना, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक थकान, चमचमाती रोशनी, नशीली दवाइयों का सेवन, थकान होना, अत्यधिक कॉफी पीना, विशिष्ट प्रकार की गंध या जैसे सेंट का प्रयोग करते हैं, ये कुछ कारण हैं जिनसे माइग्रेन पैदा होता है। और जब कोई व्यक्ति भूखे पेट रहता है, ज्यादा टीवी देखता है और धूप में घूमता है तो उससे ये रोग और बढ़ जाता है। और आयुर्वेद में इसे अर्धावेदक नाम से इसका वर्णन किया गया है और वहां पर ये बताए हुए हैं कि रूखा भोजन करना, अर्थात घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना या फिर भोजन ज्यादा मात्रा में कर लेना और समय पर भोजन नहीं करना, जैसे आजकल की दिनचर्या हो गई है कि आज का खाना हमने 1 बजे खा लिया तो कल दोपहर का खाना 3 बजे मिस भी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पहला भोजन तो पचा नहीं होता, फिर हम भोजन कर लेते हैं। और ठंडी वस्तुओं का सेवन ज्यादा मात्रा में करना और मल मूत्र की प्रवृत्ति होती है लेकिन किसी कारणवश हम उसको जबरदस्ती रोक देते हैं, इनसे भी ये माइग्रेन रोग उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति शारीरिक मेहनत रूटीन में करते हैं, मजदूरी करने वाले हुए, खेती करने वाले हुए, उनको ये रोग होने की संभावना कम होती है। लिखा पढ़ी का काम करने वालों को ये रोग अधिक होता है। शुरुआती अवस्था में अगर हम उसका ख्याल रखना शुरू कर दें और उसका जो परहेज है वो करना शुरू कर दें तो रोग पूरी तरह पनपता नहीं है। रोगी को चक्कर आते हैं, उल्टी आने की प्रवृत्ति होती है और शूल होता है। जो इसके वेग होते हैं 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन अथवा 1 मास के बाद रेगुलरली अकर होने शुरू हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। देखिए माइग्रेन का इलाज करने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोगी को कब्ज ना रहे। रोगी को पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण या कोई

0: अन्य विरेचक चूर्ण का प्रयोग उष्ण जल के साथ अर्थात गर्म पानी के साथ करवाना चाहिए। ठंडे पानी के साथ कभी भी इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस दिन भी हम इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग कराते हैं पेट साफ करने वाली, उसी दिन भोजन के रूप में हम मूंग की दाल की खिचड़ी को घी के साथ प्रयोग करने को देते हैं। माइग्रेन में दूध और जलेबी का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह होते ही अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था कर सके कि उसको जलेबी और दूध मिल जाए और उससे अपना पेट भर ले। मैंने कहा था खाली पेट से होता है, इसलिए जो देरी से पचने वाली हैं वस्तुएं उनका सेवन करना चाहिए। और जलेबी और दूध का विशेष प्रभाव है इस रोग के ऊपर। या मीठी वस्तुओं के साथ प्रयोग कर लें, दूध, रबड़ी, मलाई, खीर, मालपुआ, फेनी, घेवर, हलवा का प्रयोग करने से इस रोग की शिकायत नहीं होती। और दूध में घी डालकर पीने से इस रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें। दमे की हो या माइग्रेन की हो या दोनों हो, उसमें भोजन के बाद घी पीना, शुद्ध घी पीने से इस रोग की बड़ी अच्छी चिकित्सा हो जाती है। और गाय का दूध या गाय के दूध से बना हुआ घृत, उसकी दो दो बूंदे नाक में टपकाने से माइग्रेन में बहुत अच्छा लाभ होता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे माइग्रेन का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे फल की बात कर रहे हैं जिसकी बाजार में लगातार बढ़ती मांग किसानों के लिए आय का अच्छा स्रोत बनती जा रही है, और ये फल है सीताफल, जिसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल भी कहा जाता है। देखिए किसान भाइयों, सीताफल एक ऐसा फलदार पौधा है जो कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छा उत्पादन देता है। इसकी खेती शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके फल स्वादिष्ट होते हैं और स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सीताफल की खेती करने के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अच्छा रहता है। अधिक पाला और अत्यधिक वर्षा इसके लिए नुकसानदायक होती है। और अगर भूमि की बात की जाए तो अच्छी जल निकास वाली दोमट या अच्छी काली मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए। इस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बात की जाए सीताफल की उन्नत किस्मों की, तो सीताफल की कुछ प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिसमें बालानगर, अरकासहान, रेड सीताफल और मम्मोथ हैं। इनमें अरकासहान किस्म विशेष रूप से बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि इसके फल बड़े मीठे और अधिक गूदेदार होते हैं। पौध तैयार करने के लिए सामान्यतः बीज या ग्राफ्टिंग विधि अपनाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार पौधे अधिक उपज और जल्दी फल देने वाले होते हैं। पौधरोपण का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का माना जाता है। खेत में पौधों की दूरी की अगर बात की जाए तो 5x5 मीटर रखनी अच्छी मानी जाती है। गड्ढों का आकार लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा होना चाहिए और प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद और नीम की खली मिलाकर उसको भरना लाभकारी रहता है। अच्छे उत्पादन के लिए प्रति पौधा लगभग 15 से 20 किलो गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश देना जरूरी होता है। उर्वरकों को दो भागों में बांटकर देना लाभदायक रहता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और जैविक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सीताफल सूखा सहन कर सकता है, लेकिन फल बनने और विकास के समय नियमित सिंचाई से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना अच्छा माना जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से पानी की बचत होती है और पौधों को आवश्यक नमी भी मिलती रहती है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, खेत को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। पौधों

0: आसपास मल्चिंग करने से नमी बनी रहती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। किसान भाइयों, सीताफल की फसल में कुछ प्रमुख कीट और रोग भी लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान भी हो सकता है। सीताफल में फल छेदक कीट और मिलीबग प्रमुख कीट लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। इसी प्रकार पत्ती धब्बा रोग और जड़ सड़न जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। इसके लिए रोगग्रस्त भागों को हटाना और संतुलित सिंचाई करना जरूरी है। किसान भाइयों, तुड़ाई और विपणन ये बहुत ही जरूरी होता है। पौधरोपण के लगभग 3 से 4 वर्ष के बाद में फल लगने शुरू हो जाते हैं। जब फल हल्के पीले रंग के दिखाई देने लगें और उनकी सतह की आंखें फैलने लगें, तब इनकी तुड़ाई कर देनी चाहिए। सीताफल का बाजार मूल्य बहुत ही अच्छा मिलता है, विशेषकर शहरों और प्रोसेसिंग उद्योगों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि किसान चाहे तो समूह बनाकर भी इसको बाजार में बेच सकते हैं और इससे बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप सीताफल की वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो आप एक अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या 4 बजे युद्ध नायकों पर आधारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और रात 9:30 पर कंट्री वाइड तथा इनसाइट्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल, जिसमें आप सुनेंगे कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल, ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित होगा 7:31 पर। प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में कुलदीप सिंह आर्य और साथियों की आवाजों में रागनी सुनवाई जाएगी। सुबह 9:50 पर कार्यक्रम होगा बात आसपास की, वाचन एवं संकलन इशिका कौशिक और दिव्यम कंडवाल का होगा। सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। दिन में 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1283वां भाग। दोपहर 1:15 पर महिला जगत के आधी आबादी से क्रम में सुश्री अपराजिता सक्सेना की वार्ता का विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। दिन में 1:45 पर लोकधारा में सुनिएगा हरियाणवी लोकगीत। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में संध्या 5 बजे बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI पर चर्चा की जाएगी। शाम 5:15 पर युववाणी में कुछ खास है आज क्रम का विषय होगा डिसिप्लिन वर्सेस मैड, काम कब करें। क्रम गुफ्तगू बस यूं ही चरम से यूसुफा की बातचीत पर आधारित होगा। इसके अलावा बूझो तो जाने क्रम में दलहन अनुसंधान से संबद्ध सवाल पूछा जाएगा। संध्या 6:05 पर कृषि जगत में सुनिएगा कृषि एवं समाज पर आधारित कार्यक्रम पगडंडी, अध्यात्म से पर्यटन की ओर। शाम 6:45 पर 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनन से रेणु कोटनाला की बातचीत सुनवाई जाएगी। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे राशिद बदर साबरी और साथियों के स्वर में कव्वाली। रात 10 बजे सुनिएगा माधुरी बड़थ्वाल का लिखा पूर्व प्रसारित नाटक बंदी। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।

0: फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी। और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई हैं। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
7: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
8: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे तिथि विशेष पर जानकारी, अखबारों की सुर्खियां, फिल्मी गीत और चर्चा की जाएगी बिना सोचे समझे घुमक कड़ी के लिए ना निकलें विषय पर। इसके साथ ही चर्चा का विषय होगा रंगों का व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना सोचे समझे घुमक कड़ी के लिए ना निकलें विषय पर। साथियों, हमारे समाज में एक कहावत बहुत प्रचलित है,

बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात जो काम हम करने जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में हर पहलू से सोच विचार कर लिया जाना चाहिए, वरना पछतावा हो सकता है। यानी एक पुख्ता योजना के साथ किसी काम की शुरुआत की जानी चाहिए। काम कोई भी हो, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने काम में निश्चित ही सफल होंगे। घूमने फिरने और सैर सपाटे के लिए हमारे मन में बड़ी उमंगें होती हैं। इस दौरान बिताए गए हर पल का हम भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ एंजॉय करना हमारा मकसद होता है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही हमारे लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, जो न सिर्फ हमारे आनंद में खलल पैदा करेगी बल्कि कभी कभी तो लापरवाही के कारण हुई ऐसी घटनाएँ इंसान को ज़िंदगी भर का पछतावा छोड़ जाती हैं। साथियों, अगर घुमक्कड़ी की जिज्ञासा मन में है तो सबसे पहले अपनी यात्रा के लिए एक स्पष्ट बजट तैयार करें और उसमें होने वाली अप्रत्याशित खर्चों को भी शामिल करें। बजट के अभाव में आपकी यात्रा का मज़ा किरकिरा हो सकता है। जिस जगह आप जा रहे हैं वहां के वर्तमान मौसम की जानकारी ज़रूर लें। इससे आप मौसम में अचानक आने वाले बदलावों के प्रति न केवल सचेत रहेंगे बल्कि आपकी तैयारी उसी के अनुरूप होगी, जिससे आपको मौसम संबंधी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और व्यावहारिक बात सैलानियों को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां हम सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं वहां के स्थानीय कानूनों, रीति रिवाजों और संस्कृति का सम्मान करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, घुमक्कड़ी किसी इश्क से कम नहीं, इसलिए इसमें मुश्किलात बहुत हैं और इन मुश्किलों से पार पाना हमें आना ही चाहिए। अपने आईडी प्रूफ, आवश्यक दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट हमेशा साथ रखें। और हाँ, आखिरी वक्त की भागदौड़ और महंगाई से बचने के लिए ट्रेन, फ्लाइट और होटल की बुकिंग पहले से ही कर लें। और ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर पढ़ते चले जाएं। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। घूमने का मजा ही तो आ जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोता, और रंग आनंद और उल्लास का प्रतीक होते हैं। बसंत जब आता है तो उपवन में एक उमंग भरा वातावरण होता है। फूलों की सुगंध और उनके रंगों की छटा सबका मन मोह लेती है। भारतीय संस्कृति में तो रंगों का एक पर्व ही है होली। सकल समाज का अंगोपांग रंग डालता है ये पर्व। रंग मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है। रंग मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये भावना, ऊर्जा स्तर और यहाँ तक कि हृदय गति तथा रक्तचाप को भी बदल सकते हैं। लाल रंग ऊर्जा बढ़ाता है, हृदय गति और रक्तचाप को उत्तेजित करता है। ये जुनून का प्रतीक है, लेकिन कभी कभी आक्रामकता भी बढ़ा सकता है। वैवाहिक जीवन में यही रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है। क्रांति का रंग भी लाल ही होता है। हरा रंग तनाव कम करता है, आंखों के लिए आरामदायक है और मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ये रंग शाकाहार के प्रतीक के रूप में भी अपनाया जाता है। नीला रंग एक शांत और आरामदायक रंग है जो हृदय गति को धीमा करता है। ये अनिद्रा को कम करने और मानसिक शांति के लिए अच्छा माना जाता है। पीला रंग ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करता है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और खुशी और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। नारंगी रंग मूड को बेहतर बनाता है, भूख बढ़ाता है और मानसिक गतिविधियों को उत्तेजित करता है। बैंगनी रंग ध्यान और एकाग्रता के लिए सहायक माना जाता है। सफेद रंग मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है, इसे सद्कर्मों और शुचिता से भी जोड़ा जाता है। काला रंग अवसाद और चिंता को बढ़ा सकता है, लेकिन ये गंभीरता का संकेत भी है। इसे पाप और अंधकार से भी परिभाषित किया जाता है। पुराने जमाने से ही कुछ खास रंगों का उपयोग पुरानी बीमारियों के उपचार में सहायक चिकित्सा के रूप में किया जाता रहा है। हमारे आसपास रंग कहीं भी हों, दीवारों या कपड़ों के रंग भी सीधे हमारे मूड और उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं।

0: पर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज गुरुवार 14 मई है, मौजूदा साल 2026 का 134वां दिन। दोस्तों संभाजी राजे भोसले का जन्म 14 मई 1657 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को शरण देने के कारण संभाजी को मुगल फौज के हमलों का सामना करना पड़ा था। लगभग 9 वर्षों तक वे निरंतर औरंगजेब की विशाल सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना करते रहे। संभाजी ने अधिकांश मुगल सिपाहसालारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया था। 14 मई 1883 को मद्रास के पुदूर गांव में जन्मे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें सन 1930 में दीवान बहादुर और 1932 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उदारवादी नजरिया रखने वाले अल्लादी कृष्णा स्वामी स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान के प्रारूप समिति में रहते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों तथा नागरिकता से संबंधित संवैधानिक ढांचे को आकार देने में अहम योगदान दिया था। 14 मई 1892 को बंगाल के बारिसाल में जन्मे अरुण चंद्र गुहा कानूनी शिक्षा प्राप्त करते हुए ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय हो गए थे। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जून 1946 तक जेल की सजा काटने वाले अरुण गुहा प्रसिद्ध लेखक भी थे। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी उनकी पुस्तक फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत मशहूर हुई थी। आज़ादी के बाद अरुण चंद्र गुहा को संविधान परिषद का सदस्य चुना गया। वे 3 बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। 14 मई 1923 को कोलकाता में जन्मे प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन की अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली के अलावा उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी सक्रिय रहे। मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अल्लाह बख्श एक स्वतंत्रता सेनानी, जमींदार एवं राष्ट्रवादी नेता थे। सिंध प्रांत के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अल्लाह बख्श हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक रहे। जिन्ना ने उन्हें मुस्लिम लीग में सम्मिलित करने की बहुत कोशिश की थी, पर अल्लाह बख्श ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि धर्म के आधार पर संसार के लोगों का विभाजन अवास्तविक और गलत है। 14 मई 1943 को शिकारपुर में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी हत्या का संदेह भी मुस्लिम लीग पर किया गया था। भाषाविद शब्द

स्त्री तथा भारतीय संस्कृति के उन्नायक आचार्य रघुवीर ने कोशों की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार संपन्न किया, साथ ही एशिया में विस्तारित हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रहण एवं संरक्षण भी किया। आचार्य रघुवीर ने वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लगभग 6 लाख शब्दों की रचना की थी। 1950 में उन्होंने संविधान के प्रथम हिंदी अनुवादक के रूप में हिंदी में संविधान का पहला खंड संविधान सभा को प्रस्तुत किया था। 14 मई 1963 को आपका निधन हुआ। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नामकरण करने वाले जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के मशहूर साहित्यकार थे। आकाशवाणी में काम करते हुए उन्होंने हिंदी की लोकप्रियता में अहम योगदान दिया। वे ही हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और बाल कृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया था। 14 मई 1978 को आपका निधन हो गया। दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाएं और अभी एक नज़र आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। पश्चिम एशिया संकट से उपजी चुनौतियों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा को खबर बनाते हुए दैनिक जागरण ने सुर्खी लगाई है। सोना चांदी खरीदना महंगा, आयात शुल्क 15%। वैश्विक संकट के इस काल में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले सोने की खरीदारी कम से कम 1 साल के लिए टालने की अपील की थी। दैनिक अमर उजाला ने मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की खबर, नीट पेपर लीक मामले में कई जगह छापे, 4 के गिरफ्तार होने और पेपर के 40 लाख रुपए तक बिकने के समाचार तथा धान समेत 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ने की खबरों को सुर्खियों के साथ विस्तार से प्रकाशित किया है। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के आरंभ होने की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है, आलिया के गाउन पर दिखी भारतीय कला की झलक। अखबार के अनुसार 12 से 23 मई तक चलने वाले इस महोत्सव में एक बार फिर भारत की कला, सिनेमा और फैशन का डंका बज रहा है।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
5: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
4: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित

0: उपस्थित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: टेलीफोन सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी।

0: सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करे। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
4: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
5: Assam cabinet so passed Uniform Civil Code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
3: With this move, Assam

0: passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leave 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets one-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयत सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शाखदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के

0: अमन इकार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूद एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद कफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है, CBSE की जानिब से जारी करदा आरादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र के युगल स्वर में आप सुन रहे थे विट्ठल भाई पटेल का लिखा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इस गीत की धुन तैयार की थी बॉबी फिल्म के लिए।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में ये दो गाना आप सुन रहे थे। मैं सुहागन हूँ फिल्म से। गीतकार थे कैफी आज़मी और संगीतकार थे लच्छी राम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात

सुमन कल्याणपुर के स्वर में आप सुन रहे थे श्रीमान सत्यवादी फिल्म का गीत। गीतकार थे गुलजार दिनवी और धुन थी दत्ताराम की।

वक्त की दीवार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं माँ बेटा फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हेमंत कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
2: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
3: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
2: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर सम्पन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
4: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जनसूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
2: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
5: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्ययोजना बनाई है। इस कार्ययोजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सोनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या

0: के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काट कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान आयुष विश्वविद्यालय चिड़ियाघर बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
0: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंग बली का प्रसाद ग्रहण किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अपने सुनने वालों को याद दिला दें, संध्या 4 बजे युद्ध नायकों पर आधारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और कार्यक्रम इनसाइट्स, ये दोनों कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इसी सभा में सुबह 9:50 पर कार्यक्रम होगा बात आसपास की, वाचन और संकलन इशिका कौशिक और दिव्यम कंडवाल का होगा। सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। महिला जगत में दिन में 1:15 पर आधी आबादी से क्रम में सुश्री अपराजिता सक्सेना की वार्ता का विषय होगा ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका।

लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर सुनिएगा हरियाणवी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुलदीप सिंह आर्य और साथियों के गाए रागनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कंडवार।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत सहानपुर, जहां शिक्षा और तकनीक को एक साथ जोड़ते हुए डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नजीबाबाद के SDM आशुतोष उपस्थित रहे। वहीं समाज सेविका डॉक्टर राखी अग्रवाल सहित चेयरमैन सहानपुर खुर्शीद मंसूरी और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने शिक्षा के बदलते स्वरूप, डिजिटल माध्यमों की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं के महत्व पर, आइए सुनते हैं उनके विचार।
2: आज के दौर में पढ़ना बेहद जरूरी है, इल्म बेहद जरूरी है। उसके लिए एक पहल हमारे चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी साहब ने की है कि एक लाइब्रेरी जो है सहारनपुर में कायम की है और उसको डिजिटल कर दिया है, जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है फीस के लिए, वो लोग परेशान होते हैं, कई कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती। लेकिन ये एक अच्छी पहल और बहुत छोटे से कस्बे में इतना बड़ा काम किया है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास चंद नाम है। सबसे पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जनाब अशोक कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अशोक कुमार साहब,
3: मैं अपने सहानपुर के चेयरमैन और हमारी आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के प्रभारी भाई खुर्शीद मंसूरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहल की है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को बहुत ही यहाँ सुविधा मिलेगी। और एक डिजिटल लाइब्रेरी का जो उन्होंने उद्घाटन करके ये शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल की है, उसके लिए मैं अपने क्षेत्र की ओर से, सहानपुर के क्षेत्र की ओर से और पूरी नजीबाद विधानसभा के क्षेत्र की ओर से मैं बहुत बहुत उनका आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
2: आइए अब हमारे आज के मेहमान खुसूसी SDM नजीबाबाद आशुतोष साहब से मैं गुजारिश करूंगा।
4: सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन होने आ रहा है, तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद, यहाँ के चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करवा रहे हैं आप यहाँ, जहाँ आप बता रहे हैं कि 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं और आजकल डिजिटल जमाने में जहाँ डिजिटल लाइब्रेरी एक वो लोगों के लिए सपना होता है, वो आपने सपना आज साकार कर दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो जनता है उसके लिए, विशेषकर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पहल है कि लड़कियों के लिए सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है, तो जब डिजिटल सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी तो हमारी लड़कियाँ भी उतनी तरक्की कर पाएंगी जितना लड़के कर रहे हैं।
1: अतिथियों का कहना है कि आज के समय में विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल संसाधनों से जोड़ना भी बेहद आवश्यक है। खासकर गांव और कस्बे के छात्रों के लिए इस तरह की पहल आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर बन सकती है।
0: कार्यक्रम स्थल पर लोगों में उत्साह देखने को मिला, खासकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच इस पहल को लेकर काफी सकारात्मक माहौल दिखाई दिया।
1: यह डिजिटल लाइब्रेरी एक अलग और व्यवस्थित स्थान पर तैयार की गई है, जहां लगभग 30 कंप्यूटर लगाए गए हैं और विद्यार्थियों के लिए AC की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही विद्यार्थियों को ई-बुक्स, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से भी बातचीत करी, आइए सुनते हैं उनके विचार।
5: का नाम जैद खान, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और मैं सहानपुर से बिलोंग करता हूं। मैं यहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि लाइब्रेरी थी या कुछ भी, लाइट भी प्रॉपर नहीं आती थी, वीक टू वीक लाइट आती थी, तो हमने स्ट्रगल किया है अपनी स्टडी करने में। हमें ये इस टाइम जो डेवलपमेंट चल रहा है, चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया है, बहुत बढ़िया काम कराया है, बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा पढ़ना। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हो आप, और बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज है, लाइट है, पानी यहाँ पे अवेलेबल है, पढ़ना इसलिए

0: जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ सकते आप तो फिर नॉलेज आपको गेन नहीं हो पाएगी। लोग स्ट्रगल करके डीएम एसडीएम बनते हैं, फैसिलिटीज ऐसे प्रोवाइड होती है तभी वो बन पाते हैं। बाकी लाइब्रेरी, आप आओ यहाँ पे पढ़ो, आपको नॉलेज होगी, आपको अपने कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप तो इसलिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई मस्ट है।
1: हमने कुछ विद्यार्थियों से भी बात की।
2: हमारे साथ जुड़े हैं एक छात्र आदित्य। आदित्य, आप हमें बताइए कि ये डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से आपको कितना फायदा हुआ है?
3: मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, बच्चे बहुत गरीब होते हैं जब थोड़ा वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है आज। मुझे लास्ट एक साल से तैयारी करते हुए गए, मैनुअली यहाँ पे खुली हुई है एक लाइब्रेरी। पिछले साल से मैंने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम निकाला है, प्री उसका मेरा हो गया है पीटी, और अब मैं उसके मेंस की तैयारी कर रहा हूँ।
2: आसपास के जो भी युवा है या फिर आपके जो भाई बंधु है, उनको आप किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि वो लाइब्रेरी को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें?
3: यहाँ पे बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है। मैं भी और बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ उनको आना चाहिए, और जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है उनका लाभ उठाना चाहिए।
2: आपके साथ और कितने बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं?
3: मेरे साथ लगभग 15 से 16 बच्चे आते हैं, लगभग 15-15, 16-16 किलोमीटर से बच्चे आते हैं।
2: आप क्या रुझान देते हैं, क्या केवल छात्र आते हैं या छात्राएं भी आती हैं?
3: यहाँ छात्राएं भी आती हैं, पर छात्राएं छात्रों की तुलना में कम है।
2: आपका नाम?
4: भीम कुमार।
2: कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
4: मैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई का एग्जाम दे चुका हूँ अभी लास्ट, और इस टाइम मैं स्कूल में पहले टीचिंग करके आता हूँ 2 बजे के समथिंग। इस डिजिटल लाइब्रेरी की मिनिमम फीस क्या है वो भी हम पूछना चाहते हैं। और बात रही किताबों की, अबे किताबें तो कंपटीशन की, इसमें आज तक एक बुक है ही नहीं, अभी तक कोई किताब आई नहीं 2 साल के अंदर कंपटीशन की। तो
2: आपका नाम?
5: मेरा नाम कपिल कुमार है, और मैं यहाँ पे ही लगभग पिछले 1.5-2 महीने से लाइब्रेरी में आ रहा हूँ पढ़ने के लिए। और आज जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, तो मेरा पूछना यही है कि मतलब जैसे पानी की थोड़ी समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं है पिछले के लिए पीने के लिए, पानी वहाँ से पीते हैं टंकी से, वहाँ पे सही ठीक ठाक पानी नहीं आता है।
6: छात्र छात्राओं का कहना है कि यदि यहाँ बेहतर इंटरनेट सुविधा, पर्याप्त अध्ययन सामग्री और लगातार अपडेट होने वाली तैयारी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो, तो यह लाइब्रेरी उनके लिए और अधिक उपयोगी साबित हो सकती
7: है। इन्हीं सवालों, सुझावों और इस पूरी पहल को लेकर हमने बात की नगर पालिका सहानपुर के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी से।
6: सर, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी खुली है छात्रों के लिए, इस प्रोजेक्ट के विषय में हमें बताइए और इसका उद्देश्य क्या है?
8: हमने जो छात्र हैं क्षेत्र के, तो उनकी हमने सुविधाओं को देखते हुए हमने ये लाइब्रेरी जो है यहाँ पर बनाई है, जो डिजिटल लाइब्रेरी है पूर्णतः, और इसमें 30 कंप्यूटर है, AC है, Wi-Fi सुविधा है और CCTV कैमरे हैं, सभी सुविधाओं का हमने इसमें रखा है। और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, या वो आगे IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वेबसाइट हम बनवा रहे हैं जो डाउनलोड करके, जिसमें ई बुक्स होगी लाखों की तादाद में, जो भी वो सर्च करेंगे बच्चे वो बुक्स उसको मिल जाएगी, वो आराम से वहाँ पर पढ़ सकता है।
6: सर, क्या लाइब्रेरी का कोई चार्ज है, फिर हमने निःशुल्क रखा है?
8: लाइब्रेरी का बहुत ही मिनिमम चार्ज रखेंगे, गरीब बच्चा भी आराम से उसको जो है दे सकता है। चूंकि चार्ज इसलिए रखना पड़ेगा हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी से टाइम से आए और टाइम से जाए। हम लोगों ने 1.5 साल पहले मैनुअल लाइब्रेरी बनाई थी, तो हमने निःशुल्क हम लोग वो चलवा रहे थे, तो उसमें थोड़ा लापरवाही बच्चों को देखने के लिए मिली, कोई बच्चा किसी दिन आ जाता है किसी दिन नहीं आता है, तो उस हिसाब से हमने जो है एक मिनिमम चार्ज हम उसका रखने जा रहे हैं।
6: सर, एक और जो हमने बच्चों से बातचीत करी, समस्या उभर के आए कि उनकी पेयजल और एक ठंडे वाटर कूलर की मांग है, तो सर उस पर आप किस तरह?
8: आपका जो है हमने प्रस्ताव कर दिया है, बहुत ही जल्दी एक अच्छा वाटर कूलर, बड़ा फ्रीजर वो वहाँ पर रखवा दिया है।
7: सर, बुक्स के विषय में भी बोला था उन्होंने कि पुरानी किताबें हैं लेकिन नई किताबें नहीं मिल पा रही है उन्हें, तो इस विषय में सर?
8: वो जो देंगे वहाँ पर, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसी तरह से हम लोग किताबें वहाँ पर मंगाते रहते हैं बीच बीच में, और वहाँ पे लगभग सभी तरह की किताबें हैं। अगर कुछ छूट गई है और या कुछ उनको रिक्वायरमेंट है तो हमें बता दें, हम उसको भी करवाते हैं। और इसमें 2 शिफ्ट रहेगी, सुबह 6 से 12 बजे तक जो है लड़कों का रहेगा और 12 बजे से शाम 6 बजे तक लड़कियों।
6: चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी के अनुसार इस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। यहाँ छात्र अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकेंगे, ई बुक्स का लाभ ले सकेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे।
7: लाइब्रेरी का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रखने की योजना है। वहीं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शुल्क रखने की भी बात कही गई है।
6: अगले 1 से 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद सहानपुर, नजीबाबाद, जलालाबाद और आसपास के कई गांव के विद्यार्थी यहां आकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे अर्थात दिव्यम कंडवाल
7: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
9: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: यादों का पिटारा खुशियों का सफर, यादों का पिटारा खुशियों का सफर, लेकर आए हैं हम एक सुहाना असर।
1: बीते हुए पल कुछ खास कहानी, 2019 की यादें जो हैं सबसे सुहानी।
0: जी हाँ साथियों, आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर, और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्रम में मैं हूँ आपके साथ महवश, और मेरे साथ हैं
1: मैं ताहिर महमूद। तो सभी को हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: साथियों, भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर प्रसारित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है कि साल दर साल भारत में रेडियो का सफर कैसा रहा।
0: और आज के कार्यक्रम सुहाना सफर में हम आपसे बात करेंगे साल 2019 के उन लम्हों की जो दिल में हमेशा बसे हैं। कभी खेल में जीत, कभी विज्ञान की उड़ान, शिक्षा और संगीत में बढ़ता हिंदुस्तान, राजनीति के रंग और बदलाव हजार, याद करें मिलकर वो बीता हुआ साल।
1: साथियों, आज हम वर्ष 2019 में भारत और विश्व में रेडियो, खेल, शिक्षा, विज्ञान, संगीत और राजनीति के क्षेत्र में हुए परिवर्तन और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2019 कई नई उम्मीदों, तकनीकी प्रगति और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्ष रहा।
0: जी हाँ साथियों, ऐसी ही घटनाओं की जानकारी हम तक पहुंचाई रेडियो ने। रेडियो भारत का सबसे पुराना और लोकप्रिय संचार माध्यम रहा है। वर्ष 2019 में रेडियो ने तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: इतना ही नहीं महवश, सबसे बड़ा परिवर्तन डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन रेडियो के रूप में देखने को मिला है। लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से एफएम चैनल और ऑनलाइन रेडियो सुनने लगे। इससे रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्मार्टफोन तक पहुंच गया।
0: जी बिल्कुल ताहिर जी, सही कहा आपने। और प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो ने कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा दिया गया। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों ने लोगों को जागरूक किया।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात वर्ष 2019 में भी बेहद लोकप्रिय रहा। इस कार्यक्रम ने रेडियो को नई पहचान दी और युवाओं को भी रेडियो से जोड़ा।
0: एफएम चैनलों पर मनोरंजन, समाचार, गीत संगीत और सामाजिक विषयों पर कार्यक्रमों की लोकप्रियता काफी बढ़ी, और रेडियो जॉकी यानी आरजे की नई शैली ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने महवश, अब हम अपने श्रोताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और करवाते हैं उनका मनोरंजन।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए सुनते हैं सन 2019 में बनी फिल्म कबीर सिंह का ये गीत, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत है मिथुन का।

0: साथियों, गीत के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुहाना सफर में। आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ, जहां बदलाव ने लिखी एक नई बात। खेल के मैदान में चाहिए जुनून, 2019 में चमका भारत का खून। वर्ष 2019 खेलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया।
1: साथियों, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में आयोजित 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा। भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने विश्व कप में 5 शतक जमा कर नया रिकॉर्ड बनाया।
0: बिल्कुल ताहिर जी, और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा और वो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी।
1: जी, कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग और कबड्डी जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते। महिला खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
0: और सरकार द्वारा फिट इंडिया अभियान की शुरुआत भी इसी वर्ष यानी 2019 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही और इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना था।

बातें अभी और भी हैं, यूं ही बने रहिए हमारे साथ इस सफर में जहां हर पल है यादों में असर, यादों के असर में। जी हां साथियों, यहां पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और करते हैं एंजॉय ये गीत।

0: अभी आपने सुना सन 2019 में बनी फिल्म छिछोरे का ये गीत, जिसे आवाज दी थी अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर।
1: साथियों बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की। साल 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रभाव तेजी

0: बढ़ा। स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला।
1: जी हाँ श्रोताओं, नई शिक्षा नीति यानी NEP पर व्यापक चर्चा हुई और इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यवहारिक और रोजगार परक बनाना था।
0: छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई बुक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए। कई संस्थानों ने कंप्यूटर शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया
1: और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई गईं। बेटियों की शिक्षा और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को भी बढ़ावा मिला।
0: वर्ष 2019 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। इससे विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी।
1: बिल्कुल ताहिर जी, और बातों के इस खूबसूरत सफर के बाद अब रुख करते हैं सुरु की दुनिया की ओर और सुनते हैं साल 2019 में बनी फिल्म दे दे प्यार दे का ये गीत। आवाजें हैं अमाल मलिक और अरमान मलिक की, बोल लिखे हैं कुणाल वर्मा ने, धुन तैयार की है अमाल मलिक ने।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे अमाल मलिक और अरमाल मलिक की आवाज़ों में। ये लिया गया था फिल्म दे दे प्यार दे से, जो 2019 की फिल्म थी। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा था और धुन अमाल मलिक की थी। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफ़र, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। विज्ञान ने छू लिया आसमान, नई खोजों से बढ़ा देश का मान, और वर्ष 2019 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। ये मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बना।
1: साथ ही भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल तकनीक और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI और रोबोटिक्स का उपयोग बढ़ने लगा।
0: स्वास्थ्य विज्ञान में भी नए शोध किए गए। आधुनिक मशीनों और तकनीकों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया।
1: और पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी जागरूकता बढ़ी। वैज्ञानिकों ने प्रदूषण कम करने और ऊर्जा बचाने के नए उपायों पर काम किया।
0: साथियों, विज्ञान समझता है जीवन को और संगीत सजाता है जीवन को। तो बात करते हैं वर्ष 2019 में संगीत की दुनिया में जो बदलाव हमें देखने को मिले और रेडियो ने उसे किस तरह संवारा।
1: बिल्कुल श्रोताओं, बॉलीवुड संगीत के साथ साथ स्वतंत्र संगीत यानी इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी तेजी से लोकप्रिय होने लगा। कई नए गायकों और संगीतकारों को पहचान मिली। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा। लोग मोबाइल पर ऑनलाइन गाने सुनने लगे।
0: दोस्तों, रिमिक्स गानों का ट्रेंड काफी लोकप्रिय रहा। पुराने गीतों को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। संगीत आधारित रियलिटी शो ने नए कलाकारों को मंच प्रदान किया। देश भर से प्रतिभाशाली गायकों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिला।
1: बिल्कुल साथियों, और बातों का ये कारवां यहीं ठहरता है और अब सुरों का सफर शुरू होता है। जुड़े रहिए और सुनिए ये शानदार गीत।

0: ये खूबसूरत सा गीत हमने आपको सुनवाया 2019 की फिल्म ड्रीम गर्ल से। आवाज़ थी जोनिता गांधी और नक्काश अजीज़ की। कुमार ने गीत लिखा था और मीत ब्रदर्स ने इसका संगीत तैयार किया था। गीत के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं श्रोताओं। तो चलिए साथियों, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में साल 2019 में क्या क्या घटनाएं घटी और रेडियो ने इसमें अपनी क्या भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल ताहिर जी, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था जिसमें करोड़ों मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पुनः पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की। ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बना।
0: महवाज, इसके बाद एक और ऐतिहासिक निर्णय सामने आया, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। ये निर्णय लंबे समय से चर्चा का विषय रहा था और 2019 में इसे लागू कर दिया गया।
1: बिल्कुल ताहिर जी, और इसी वर्ष अयोध्या विवाद पर भी एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने निर्णय में वर्षों पुराने इस विवाद को समाप्त किया और देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया।
0: और महवश इन्हीं सब घटनाओं को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी ने अहम भूमिका निभाई। जहां एक ओर डिजिटल माध्यम तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं रेडियो ने अपनी विश्वसनीयता और पहुंच के कारण हर वर्ग के लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई।
1: बिल्कुल, और गांव और दूरदराज क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है, वहां रेडियो आज भी सबसे प्रभावी माध्यम बना हुआ है। और आकाशवाणी ने सरल और स्पष्ट भाषा में समाचार प्रस्तुत कर हर व्यक्ति को इन महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से अवगत कराया।
0: तो महवश, हमारे कार्यक्रम का समय अब पूरा हुआ चाहता है, तो श्रोताओं से इजाजत लेते हैं कार्यक्रम संपन्न करने की। श्रोताओं, आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को मेरा यानी ताहिर महमूद का
1: और महवश का नमस्कार।
0: तो कार्यक्रम में सबसे पहले श्रोताओं आपको सुनवाते हैं मजबूर फिल्म का गीत। आवाज है हेमंत कुमार की, गीतकार हैं इंदिवर और धुन है कल्याण जी आनंद जी की। आपकी फरमाइशी पत्र इस गीत के बाद हम पढ़ेंगे।

हेमंत कुमार के स्वर में आपने सुना मजबूर फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की और पसंद थी आप सब श्रोताओं की। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बोकोलिया और उनके परिवार के सदस्य। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से फरमाइश करते थे राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने भी इसी गीत के लिए

0: फरमाइश की थी।
1: और अगला मैसेज हमें मिला है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अब्दुल गफ्फार डावल खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे का। इसी के साथ ये मैसेज हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी पायल जोशी का।
0: ये पत्र हमारे पास आया है मेन रोड तेलहारा से। अनुरोध करते हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वीएस महोबिया और कमला महोबिया ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जिला खरगैना सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश का।
0: परिमहल कासगंज से आप थे आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित भी इसी गीत को पसंद करते थे। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने फरमाइश की थी।
1: यह हमें मिला है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज, कैलाश, विनोद, गोर्धन और हसन का। इसी के साथ ये मैसेज हम शामिल करते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु, रिधान

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। राहुल देव बर्मन ने इस गीत की धुन तैयार की थी मेरे जीवन साथी फिल्म के लिए, और इस गीत को पसंद करते थे हमारे ये सब श्रोता। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी। हलवाईयान कस्बा शेरकोट से आप थे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजिदा और चांदनी रानी।
1: और ये मैसेज हमें मिला है सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी का। अगला मैसेज हम शामिल करते हैं जो कि हमें लिख भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का।
0: दाऊद सराय सहारनपुर से इस गीत को पसंद करते थे अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी। दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से आप थे मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और सोनी।
1: ये अगला मैसेज हमें मिला है नास पैलेस अजमेर शरीफ से, भेजा है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। अफगाना

0: खत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का।
1: मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैनी बरेली से बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, कनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। तो आप सब की पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया।

0: सच्चा झूठा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इंदीवर ने इस गीत को लिखा था और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ससुराल फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की और गीतकार हैं शैलेंद्र। इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। मेन बाजार नेटोर से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज़ राही, एम जुनेद राही, अलसबा गुल, गुलफिशा रानी, मोहम्मद आयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी।
1: और ये मैसेज हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से। फरमाइश करता है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
0: पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया। तो आप सब श्रोताओं की पसंद पर सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और धुन थी शंकर जयकिशन की। इसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे ताहिर महमूद
1: और महवश को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी साथियों को महवश का एक बार फिर से नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत, जिसे संगीत दिया है साजिद वाजिद ने, बोल लिखे हैं अरुण भैरव ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म बादल से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की, बोल लिखे हैं समीर ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म बादल में। साथियों, ये फिल्म सन 2000 की बनी राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी एक्शन और थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में बॉबी देओल और रानी मुखर्जी मुख्य कलाकारों में थे। इसका निर्देशन राजकुमार ने किया था, संगीत अनु मलिक ने दिया था और इस फिल्म की शैली एक्शन और ड्रामा थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रही थी और इसके गीत को काफ़ी पहचान मिली थी। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश है अलका याग्निक, कुमार सानू और साथी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता। गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

अभी आपने सुना अलका याग्निक, कुमार सानू और साथी को फिल्म दिल के रिश्ते में। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जाल द ट्रैप से। गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक ने, गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है आनंदराज आनंद ने।

अभी आपने सुना अलका याग्निक को फिल्म जाल द ट्रैप में। ये फिल्म सन 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था और इसमें कलाकार सनी देओल, तब्बू, रीमा सेन, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि और आशीष विद्यार्थी थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कुछ कुछ होता है से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी। धुन तैयार की है जतिन ललित ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी

0: रास्ते पहुंचे हैं और माथे पर गीला कपड़ा रखे हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।

0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
1: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
2: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
3: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
6: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकंपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप।

0: ऊंची चोटी जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में हो ताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन।

0: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते। हाँ, हाँ, हाँ,
0: बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
2: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
3: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
0: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
3: जी।
1: अच्छा,
2: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
0: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, बारीक

0: मैंने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड, वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू।

नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक थे NCERT। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का समय रहेगा आज दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। क्रम रहेगा आधी आबादी से। चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण और हमारी आदतें। साथ ही होगी वार्ता। विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी अपराजिता सक्सेना।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। समय रहेगा 1:45 पर। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही संगीतकार में विशाल भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत।

शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गुफ्तगू बस यूं ही और बूस्टर।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:55 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे 90 साल बेमिसाल। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता, जिसमें मनन से बातचीत करेंगी रेणु कोटनाला।

शाम 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। चर्चा का विषय रहेगा आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा आप सुनेंगे कृषि एवं समाज पर आधारित कार्यक्रम पगडंडी, अध्यात्म से पर्यटन की ओर। शाम 5 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आप सुनेंगे बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में, अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI। रात्रि 10 आप सुनेंगे नाटक बंदी। लेखिका, प्रस्तुतकर्ता और निर्देशिका होंगी माधुरी बड़थवाल। प्रस्तुति सहयोग रहेगा रजनीश गुप्ता का। प्रतिभागी कलाकार होंगे जयरंधर, निर्देश त्यागी रजनीश शर्मा, मंजुला नेगी, रजनीश गुप्ता, डॉक्टर एस के जौहर, दर्शन कुमार और माधुरी बड़थवाल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे कलाकार राशिद बदर साबरी और साथी की आवाजों में कुछ कव्वालियां। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे उन वीरों की जो हमारे आज के सुरक्षित वर्तमान के पीछे खड़े हैं, और वो हैं हमारे सैनिक। साथियों, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारे सैनिक सीमाओं पर जाग रहे होते हैं। जब हम त्यौहार मनाते हैं, तब वे अपने परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा में डटे रहते हैं। सैनिक होना सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक जिम्मेदारी, त्याग और एक अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। जरा सोचिए, कड़कड़ाती ठंड हो, तपती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, हमारे जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए देश सबसे पहले आता है, फिर उनका परिवार और अंत में वे खुद। हम अक्सर अपने छोटे छोटे दुखों में उलझ जाते हैं, लेकिन एक सैनिक हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा निश्चित करता है। सैनिकों की बहादुरी के किस्से हमें गर्व से भर देते हैं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष। हर बार हमारे सैनिक ये साबित करते हैं कि भारत की ओर उठने वाली हर नजर का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, बातें अभी आपसे और भी करेंगे। यहाँ पे सुनते हैं एक गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथी ने, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथी को फिल्म वीर ज़ारा में। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। साथियों, सैनिकों का जीवन अनुशासन, समर्पण और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम उनके इस बलिदान का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हम उनका सम्मान करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश को मजबूत बनाएं। क्योंकि वो सरहद पर खड़े हैं, तभी हम यहाँ खड़े हैं। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म केसरी से बी प्राक की आवाज़ में संगीत दिया है आरको ने, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

अभी आपने सुना बी प्राक को फिल्म केसरी में। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली पेशकश है पमीला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुनने वाले सभी साथियों को महवश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अपने कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म गेरुआ से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा। संगीत दिया है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म कोई मिल गया से। गीत को आवाज दी है उदित नारायण और चित्रा ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।
1: अब बच्चे खुश और मम्मी भी, कारवां मिनी किड्स।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम की अगली पेशकश है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है एक रिश्ता। संगीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चलते चलते से। संगीत की धुन तैयार की है जतिन ललित ने, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

अभी आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक को फिल्म चलते चलते में। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है फिल्म धड़कन से। गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाले भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
4: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Sayed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al-Marar, and Ronald Lamola from South Africa, among others. Foreign ministers of BRICS member countries will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. The theme for India's BRICS chairship this year is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Indonesian counterpart Sugiono on the sidelines of the meeting this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said they reviewed the progress of the Comprehensive Strategic India-Indonesia Partnership and the cooperation with the Association of Southeast Asian Nations. Congress MLA V.D. Satheeshan will be the new Chief Minister of Kerala. The Congress today announced the name of Mr. Satheeshan during a press conference in New Delhi. Union Home Minister Amit Shah today said the National Disaster Response Force, NDRF, has earned the trust of 140 crore people across the country within a short span of 20 years. The Home Minister said this while addressing the President's Colour Award ceremony of the NDRF in Ghaziabad. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next phase of India-Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains across sectors such as agriculture, digital infrastructure, healthcare, clean energy, manufacturing and technology. Mr. Goyal was addressing the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday. The minister also expressed confidence that the India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month alongside the 4th India-Africa Forum Summit will be a success. The Enforcement Directorate, ED, is conducting an investigation in the case of the Guard Technologies Private Limited and others and is carrying out searches under the provisions of Foreign Exchange Management Act at premises belonging to 14 individuals and entities. In its statement, the ED said the investigation was initiated on the basis of information received that the companies at Guard Technologies has been collecting funds from individuals through payment aggregators for online gaming activities. The bilateral talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. In his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक्कदा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनाक़िदा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज NDRF की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो NDRF के साथ SDRF, पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, NCC, NSS और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम से कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि फैसले से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवीयत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए MSP में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज निस्फ से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम के कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरियस्त ने असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफ़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी ज़रूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरीट और डायरेक्ट्रेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन का 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को आपकी बहन आपकी सखी सुनीति आर्य का प्यार भरा नमस्कार। बहनों स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहनों ये कार्यक्रम हर उस महिला के लिए है जो अपने हौसलों से नई पहचान बना रही है, जो घर और करियर दोनों को बखूबी संभाल रही हैं और हर दिन एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। यहाँ बात होती है नारी शक्ति की, उसके सपनों की, संघर्षों की और उसकी अनगिनत सफलताओं की। कार्यक्रम में बहनों सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम क्या क्या सुनवाएंगे। तो बहनों आज हम सुनवाएंगे एक महत्वपूर्ण वार्ता जिसका विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, और इस विषय में हमें जानकारी देंगी अपराजिता सक्सेना। साथ ही करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और कराएंगे आपका मनोरंजन भी, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। बहनों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां अब महिलाओं ने कमजोर शब्द की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। वो अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद अपने फैसले लेने वाली, अपने सपनों को साकार करने वाली एक मजबूत पहचान बन चुकी है। बहनों, आज महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि बाहर निकलकर अपने परिवार और समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि आज की महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जानती है और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन अब महिला उन चुनौतियों से घबराती नहीं, बल्कि उन्हें पार करके और भी मजबूत बनती है। आज की महिला एक शक्ति है, एक प्रेरणा है और समाज के उज्जवल भविष्य की नींव भी है। तो आइए इस सफर में हम सब साथ चलें, सुने उस कहानी को जो हिम्मत देती है, महसूस करें उस ताकत को जो हर महिला के अंदर बसती है, क्योंकि नारी सिर्फ सृजन नहीं, बदलाव की पहचान है। तो आइए आधी आबादी क्रम में सुनते हैं एक ऐसी ही संघर्षशील महिला की कहानी। बहनों, आज आधी आबादी क्रम में हम बात करेंगे आस्था सिंह के बारे में, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। आस्था पंजाब के जीरकपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने भोपाल और पंचकुला से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। आस्था बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और परिवार का पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहा। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कब से पढ़ना शुरू किया और इतनी सी उम्र में उन्होंने आईएएस का पद हासिल कर लिया? कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे सिलेक्शन इतनी जल्दी हो गया? चलिए आइए जानते हैं।
1: आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वो सिटिंग विद माई सेल्फ और खुद को जानना, खुद की कैपेबिलिटीज को, एक तरह से जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं, वो करा मैंने बैठकर। तो जैसे मैंने रियलाइज किया कि मैं कॉलेज तो मैंने अपना दिल्ली में ही किया था, बट फिर मैंने सोचा कि शायद यूपीएससी की प्रेपरेशन करने में आपको मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट करना चाहिए, बट अगर मैं दिल्ली में रहती तो ज्यादा टाइम मेरा बाकी चीजें, कभी अपनी लॉन्ड्री, कभी खाना, कभी फ्लैट की दिक्कतें, ये सारी चीजें करने में और अपनी मेंटल सैनिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता मेरे लिए। और मैं चाहती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूं। एक साल में मुझे पूरा सिलेबस भी प्रिपेयर करना था, उस करके मैंने सोचा कि मैं घर जाके प्रिपरेशन करूंगी। पहला डिसीजन मेरा ये था कि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं घर से भी कर सकती हूं प्रिपरेशन। सेकंड वाज विद रिगार्डिंग टू अ फाउंडेशन कोर्स इन अ कोचिंग। तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द मैटर जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है स्टैटिक, और स्टैटिक के काफी बेसिक सोर्सेज भी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से और मल्टीपल टाइम्स अगर उन्हें रिवाइज कर लेते हैं तो आप इतने प्रिपेयर्ड होते हैं कि यू कैन गो इन द एग्जाम कॉन्फिडेंट। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप खुद नहीं कर सकते।
0: मैंने उनके दादाजी हमेशा कहते थे कि वो एक कलेक्टर बनेगी। यही बात शायद उनके मन में बैठ गई और धीरे धीरे वही दादाजी का दिखाया सपना उनका लक्ष्य बना। आस्था ने यूपीएससी की तैयारी बिना किसी कोचिंग के शुरू की। उन्होंने खुद पढ़ाई करने का फैसला लिया। सही किताबें और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से उन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया। कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया और नई चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ी।
1: ये भी मैंने रियलाइज किया कि मैं भी जल्दी सिलेबस को कवर कर पाऊं अपने हिसाब से, सेल्फ स्टडी से करके। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन भी लिया कि मैं ना करूं एक फाउंडेशन कोर्स। तो आई थिंक ये दो प्राइमरी डिसीजन थे जिसकी वजह से मैंने टाइम सेव किया थोड़ा अपना, जिसकी वजह से मैं टाइम पे सिलेबस कर पाई और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे पाई।
0: आस्था ने पहले हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा दी। उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण पास कर लिए थे और अच्छी रैंक भी हासिल की। इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई भी जारी रखी। नौकरी की ट्रेनिंग के साथ रोज 6 से 7 घंटे वो पढ़ती थी, यानी कि कड़ी मेहनत उन्होंने की। आस्था ने 2024 में यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दिया और पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल की। उस समय वो सिर्फ 21 साल की थी। उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा किया और सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान दिया।
1: खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मेक एनी ऑफ दिस डिसीजंस रिगार्डिंग कोचिंग या गाइडेंस या मेंटोरशिप। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी जो मोटिव होता है कोचिंग का, दैट इज टू गाइड यू, गिव यू अ डायरेक्शन, गिव यू डिसिप्लिन। अगर आप वो चीजें खुद से कर सकते हो देन मे बी यू डोंट नीड इट, बट अगर आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन नहीं ले पाते हो, आपको नहीं समझ आता कि मैं कहां पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करूं कि इतना पढ़ना है, ये सारी चीजें रेलेवेंट है या नहीं है, तो देन यू गो फॉर कोचिंग्स, राइट? बट मुझे ऐसे लगा कि PYQs देखकर, मेरे कुछ सीनियर्स थे जो दे रहे थे, ये एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ टाइम से, ऑनलाइन इतनी सारी गाइडेंस अवेलेबल है, जिसको मैंने यूटिलाइज किया और मुझे लगा कि ठीक है, आई नो इनफ कि मैं ये डिसीजन अपने लिए खुद ले सकता, तो ऐसे मैंने किया. तो मैंने बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया, आई टॉक टू सीनियर्स, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि कौन से रिसोर्सेज मैं पढ़ सकती हूँ, कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, या अफोर्डेबल जो भी ऐसे क्रैश कोर्सेज होते हैं, तो ये सब मैंने करा. और PYQs को देख देख कर मैंने अपनी एक तरह से बाउंड्री ड्रॉ करी कि ये रेलेवेंट है.
0: आस्था ने अपने स्टडी टेबल पर किताबों का फालतू ढेर नहीं लगाया, इसके बजाय चुनिंदा और जरूरी किताबों पर ही उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा. शुरुआत में 8 से 10 घंटे की उन्होंने पढ़ाई की, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उन्होंने निकाले और बार बार एक ही चीज का रिवीजन वो करती थी.
1: मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी और 10th तक भी मेरे लिए ऐसे साइंस और सोशल साइंस एज सच मुझे पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स थे नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे इसका डर था कि मैं कैसे करूंगी ये सब्जेक्ट्स. बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. आई थिंक एक बात है कि मुझे पढ़ना इन जनरल काफी पसंद है, तो मैंने जब बुक्स देखी तो थोड़ी मोनोटोनस तो लगी मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, टीचर्स के लेक्चर्स देखे जो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको देख के मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा. और फिर मेरा एक ये रहता है कि अब मैंने कुछ उठाया तो मैं इसको एकदम अच्छे से ही करूंगी, डू यू नो हाफ हार्टेडली. तो इसमें कभी भी अगर बोरिंग भी लगता था, पर पता है कि करना तो है, ले लिया ये अपने ऊपर काम, तो देन यू कांट जस्ट लीव इट, राइट? तो ये था एंड

0: थिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मैं कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट. ऐसे दिन थे कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, इवन ड्यूरिंग मेंस मैं 6-7 घंटे ही शायद पढ़ पाती थी बीच में, क्योंकि मेरी हरियाणा सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी. बट मैंने कंसिस्टेंट रखा, कभी ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हुआ लाइफ में या कुछ भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आया और आपने बस छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया. तो कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं एक तो खुद को नेगेटिव मोटिवेशन भी देती थी काफी कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो कोई दूसरा वहां बैठ के पढ़ रहा है और मेरी ड्रीम जॉब मुझसे लेने के लिए खड़ा है, तो अगर मैंने नहीं एफर्ट डाला तो कोई और ले जाएगा. तो थैंकफुली मुझे ऐसे घर पे मेरे काफी अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला पढ़ने का. मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे दे हैव प्रायोरिटाइज माई पढ़ाई ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसे घर पे दिक्कत नहीं थी कि माहौल नहीं बन रहा पढ़ाई का, तो मुझे लगा कि वाई वेस्ट द टाइम एंड एनर्जी टू गो टू अ लाइब्रेरी जब मैं घर पे ही उतने मोटिवेशन से पढ़ सकती हूँ. एंड ओवर दैट ऐसे सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीजों से भी और शोज देखना नेटफ्लिक्स पे, ये सब मुझे कभी ऐसे डिस्ट्रैक्टिव नहीं रहा, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं था बल्कि मेरे मेरा दिमाग उनसे फ्रेशन होता था. तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो मुझे दिक्कत लेके नहीं आए, जिस वजह से मैंने घर पे ही.
1: आस्था को विश्वास था कि अगर सही दिशा में ईमानदारी से मेहनत की जाए तो महंगे कोचिंग सेंटर्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई की। इसी तरह वो उस मुकाम पर पहुंची जो उन्होंने अपने लिए सोचा था। कहते हैं ना कि सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत हो, और ऐसी ही हिम्मत और मेहनत की मिसाल बनी IAS अधिकारी आस्था सिंह। साधारण सोच से अलग बड़े सपनों को अपनी मेहनत से सच करना आसान नहीं होता। कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास के दम पर उन्होंने UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पार किया और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। फिर उनकी सफलता सिर्फ नौकरी पाने की कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की की उम्मीद है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है। आस्था सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बस मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अभी हम सुन रहे थे क्रम आधी आबादी से, और बहनों अब बात कर लेते हैं कुछ पर्यावरण को संरक्षण करने की। बहनों यदि एक महिला जागरूक हो जाए तो कहते हैं कि पूरा परिवार जागरूक बन जाता है। महिलाएं घर व समाज की धुरी होती हैं। घर की रसोई से लेकर बच्चों की परवरिश तक, नौकरी से बिजनेस तक, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होती है। ऐसे में हम अपनी छोटी छोटी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाएं तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे बहनों हम बाजार जाते हैं तो घर से ही कपड़े या जूट का थैला शॉपिंग के लिए लेकर जाएं, जिससे प्लास्टिक से हम बच सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां सबसे ज्यादा पर्यावरण को दूषित करती हैं। जहां तक हो सके इनसे हमें बचना है और अपनी धरती माँ को भी इसके प्रभाव से हमें बचाना है। मैंने और पानी की बचत हमें जरूर करनी है। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचकर देखें कि यदि पानी ना हो तो हम किस तरह से जीवन को जिएंगे। इसलिए पानी का प्रयोग सोच समझकर हमें करना है। बच्चों को भी पानी के महत्व के बारे में समझाएं। जैसे बच्चे ब्रश करते हैं और नल खुला छोड़ देते हैं तो उस टाइम उनको बताएं कि पानी कितना जरूरी है। रसोई के गीले कचरे को इधर उधर ना फेंक कर उसे खाद के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और बहनों प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग कम से कम करें या ना ही करें तो अच्छा है। जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, डिब्बे, टिफिन, इसकी जगह हम कांच का सामान ले सकते हैं या फिर स्टील का। अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं, और सिर्फ पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि उनका रखरखाव और सींचने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बिल्कुल, अपने छोटे बच्चे को भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताते हुए उस पेड़ के खाद पानी की जिम्मेदारी हम दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार या संगठनों का काम है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जरूरत हमारे घर से ही होती है। इसकी शुरुआत हमारे ही घर से होनी चाहिए। यदि एक माँ अपने बच्चे को पानी बचाना सिखाती है, एक गृहिणी यदि प्लास्टिक की जगह स्टील या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती है तो वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही होती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही होती है। बहनों आज जरूरत है कि हम महिलाएं कुछ संकल्प लें कि बिना जरूरत बिजली बर्बाद नहीं करेंगे, हर साल कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे, पॉलिथीन की जगह कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करेंगे, और अपने घर के आसपास पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे कि थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ी की बजाय पैदल या साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। लंबी दूरी के लिए हम बस या फिर ट्रेन का उपयोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि गाड़ी ही निकालें हर जगह के लिए। प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह हमें इलेक्ट्रिक या CNG वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक बनाएं। और बहनों, आज की हमारी वार्ता का विषय भी कुछ इससे मिलता जुलता है। और बहनों, अब समय है हमारी आज की वार्ता का, जिसका विषय है ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं अपराजिता सक्सेना।
2: आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक शिक्षिका होने के नाते मैं रोज बच्चों के बीच रहती हूँ। मैं ये महसूस करती हूँ कि आज की पीढ़ी बहुत जागरूक है, लेकिन साथ ही सुविधाओं पर बहुत अधिक निर्भर भी होती जा रही है। कई बार हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद पंखे चलते रहते हैं, कमरे में कोई नहीं होता, फिर भी लाइट जलती रहती है, मोबाइल घंटों चार्जिंग पर लगा रहता है। ये बातें छोटी लगती है, लेकिन यहीं से ऊर्जा की बर्बादी शुरू होती है। और सच कहूं तो बच्चों को यह जिम्मेदारी सबसे पहले घर से ही सीखने को मिलती है, खासकर अपनी माँ से। हम सब ने बचपन में अपनी माँ से यह जरूर सुना होगा, कमरे से निकलो तो पंखा बंद कर दो, दिन में इतनी लाइट क्यों जला रखी है, पानी व्यर्थ मत बहाओ। उस समय ये बातें केवल घर की हिदायत लगती थी, लेकिन आज समझ आता है कि ये जिम्मेदार जीवन जीने की सीख थी। आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती आबादी, बढ़ती जरूरतें और आधुनिक जीवन शैली ने ऊर्जा की मांग को बहुत बढ़ा दिया है। भारत जैसे देश में जहां हर साल बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है, ऊर्जा संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़। ये केवल मौसम की खबरें नहीं है, ये प्रकृति की चेतावनी है। ऐसे समय में ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, वह पूरे परिवार की आदतें और सोच भी बनाती है। एक महिला घर का बजट संभालती है, गैस कैसे बचेगी ये सोचती है, बिजली का बिल कैसे कम आए इसका ध्यान रखती है, कम संसाधनों में भी पूरे परिवार की जरूरतें पूरी करती है। असल में महिलाएं बिना किसी बड़े प्रशिक्षण के सभी संसाधनों का सबसे अच्छा प्रबंधन करना जानती है। और मैंने ये महसूस किया है कि बच्चे वही आदतें सबसे जल्दी सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर माँ बिजली की बचत करती है तो बच्चा भी सीखता है, अगर घर में पानी की कदर होती है तो बच्चा भी जिम्मेदार बनता है। इसलिए महिलाओं की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है, वे आने वाले समाज को तैयार करती है। आज स्कूलों में भी बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि जरूरत ना हो तो लाइट और पंखा बंद करें, पानी की बर्बादी ना करें, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें। लेकिन इन बातों का असली असर तब होता है जब वही सीख घर में भी दिखाई देती है। श्रोताओं, हमारी दादी नानी शायद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जैसे शब्द नहीं जानती थी, लेकिन वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना जानती थी। वह चीजों को पुनः उपयोग करती थी, पानी व्यर्थ नहीं बहने देती थी, जरूरत के अनुसार चीजों को इस्तेमाल करती थी। आज आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची भी बढ़ी है। कमरे में कोई नहीं होता, फिर भी AC चलता रहता है, मोबाइल पूरी रात चार्जिंग पर लगा रहता है, दिन में भी कई घरों में हर कमरे की लाइट जलती रहती है। धीरे धीरे ये केवल बिजली का बिल नहीं बढ़ाता बल्कि पर्यावरण पर भी बोझ डालता है, क्योंकि हमारे देश में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा आज भी कोयले जैसे संसाधनों पर आधारित है। जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। एक शिक्षिका होने के नाते मुझे लगता है कि ऊर्जा संरक्षण की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह बच्चों की आदतों का हिस्सा बननी चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा छोटी उम्र में ये सीख जाए कि जरूरत ना हो तो बिजली बंद करनी है, पानी व्यर्थ नहीं बहाना है, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना है, तो वह बड़ा होकर जिम्मेदार नागरिक बनेगा। और इस सीख की शुरुआत सबसे पहले घर की महिला से होती है। आज की महिला केवल गृहिणी नहीं, वह शिक्षिका है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, किसान है, अधिकारी है और समाज को दिशा देने वाली शक्ति भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई महिलाएं सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे अभियानों से जुड़ रही है। कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। यह बदलाव बहुत उम्मीद देता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि महिलाओं को केवल जिम्मेदारी देना काफी नहीं है, उन्हें निर्णय लेने में बराबरी का अधिकार भी मिलना चाहिए। जब घर में नया उपकरण खरीदा जाए तो उसकी बिजली खपत को महत्व दिया जाए, जब घर बनाया जाए तो प्राकृतिक रोशनी और हवा का ध्यान रखा जाए, और जब बच्चों को सीख भी दी जाए तो उन्हें केवल अच्छे अंक लाने को नहीं बल्कि अच्छा नागरिक बनने की सीख भी दी जाए। मुझे लगता है कि ऊर्जा संरक्षण कोई कठिन काम नहीं है, यह केवल जिम्मेदार जीवन जीने की आदत है। अगर हर घर में केवल इतनी जागरूकता आ जाए कि जरूरत ना हो तो बिजली बंद करें, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें, पानी की बर्बादी रोकें, तो देश स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। और यह परिवर्तन महिलाओं के निर्देशन में सबसे तेजी से आ सकता है, क्योंकि महिलाएं केवल खुद नहीं बदलती, वह पूरे परिवार की सोच बदल देती है। एक जागरूक माँ अपने बच्चों को जिम्मेदार बना सकती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ऊर्जा संरक्षण केवल बिजली बचाने का काम नहीं है, ये भविष्य बचाने का प्रयास है। अगर घर की महिला जागरूक हो जाए तो पूरा परिवार जिम्मेदार बन जाता है। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। रोशनी केवल बिजली से नहीं, सोच से भी घर जगमगाता है, और एक जागरूक महिला ही हर पीढ़ी को जीना सिखाती है। वो माँ बनकर समझाती है, बेटा जरूरत भरी जलाना। वो पत्नी बनकर याद दिलाती है, फिजूल खर्च से घर नहीं चलाना। कभी पानी की हर बूंद बचाकर, कभी चूल्हे की आंच संभालकर, वो चुपचाप अपने हिस्से का देश निर्माण करती है घर घर। जलते दीपक ने एक दिन सूरज से ये बात कही, मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, अंधेरों से लड़ता जानता हूँ अभी। ठीक उसी तरह घर की नारी चुपचाप बहुत कुछ कर जाती है, एक स्विच बंद कर भी देश के भविष्य को बचाती है। आज समय की पुकार यही, अब जागना होगा हम सबको। ऊर्जा बचाना केवल आदत नहीं, ये कर्ज है आने वाले कल पर हम सबको। प्रकृति का सम्मान करेंगे, ऊर्जा बचाकर हर घर में बेहतर भारत निर्माण करेंगे, क्योंकि जब एक महिला जागरूक होती है तो केवल एक घर नहीं बदलता, पूरा समाज बदलने लगता है, पूरा समाज बदलने लगता है।
1: अभी हम सुन रहे थे महत्वपूर्ण वार्ता जिसका विषय था ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, और इस बारे में हमें जानकारी दे रही थी अपराजिता सक्सेना। और बहनों, आपके मनोरंजन का भी हमें ध्यान रखना है, तो चलिए कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ बहनों घड़ी हमें अब आपसे और बातें करने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी चलते चलते हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि हम बहनें अपना शरीर का तो पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन कभी कभी पैरों के प्रति लापरवाही कर देते हैं। तो आज हम घर पर ही कैसे पेडिक्योर कर सकते हैं, इस बारे में चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं। बहनों सबसे पहले नाखूनों पर लगी हुई नेल पॉलिश को हमें हटा देना है, फिर टब में या बाल्टी में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक और क्रीम सोप डाल दें। अगर पैरों की त्वचा रूखी है तो उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। नमक हमारे पैरों की त्वचा को नरम बनाता है तो ऑलिव ऑयल उसके लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। मैंने पैरों को कम से कम 15 मिनट तक इस के पानी में रखे रहने दें और उसके बाद साफ पानी से पैरों को धोकर अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद स्क्रब कर लें, स्क्रब अच्छे से करें, 10 मिनट स्क्रब करने में लगाएं। उसके बाद पैरों को ठंडे पानी से धो दें और फिर उसके बाद हल्की सी कोई क्रीम आप पैरों पर लगाकर मसाज करेंगे तो आपके पैरों को आराम भी मिलेगा और पैरों पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी। उसके बाद पैरों पर नेल पॉलिश का सिंगल कोट लगाएं और उसको सूखने दें, फिर डबल कोट लगाकर उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो बहनों अब हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो चलते चलते यही कहेंगे कि फिर मिलेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी कि सुनीति आर्य को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना हरियाणवी लोकगीत। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

0: In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Satvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Zahekal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satishan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों

0: संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
2: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16

0: राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ

0: के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। इसमें आज आप सुनेंगे विशाल भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत। साथियों, विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था और इन्हें बचपन से ही संगीत और साहित्य में गहरी रुचि थी। इनके पिता राम भारद्वाज एक कवि थे जिसका प्रभाव इनके जीवन और करियर पर साफ दिखाई देता है। विशाल भारद्वाज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी में ही की और बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और इसी दौरान उनका रुझान संगीत और फिल्मों की ओर बढ़ा था। अब अगर इनके करियर की बात करें तो विशाल भारद्वाज ने अपने करियर की शुरुआत एक संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में की थी। इन्होंने बच्चों की फिल्म अभय के लिए संगीत तैयार किया था जिससे उन्हें काफी पहचान मिली। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने कई फिल्मों में संगीत दिया भी और धीरे धीरे फिल्म निर्देशन की ओर भी बढ़े। विशाल भारद्वाज ने निर्देशक के रूप में कई बेहतरीन फिल्में बनाई जिनमें खास तौर पर मकबूल, ओमकारा और हैदर जैसी फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में विलियम शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित है और भारतीय सिनेमा में इनकी खास पहचान है। तो आइए सुनते हैं फिल्म हैदर का ये गीत जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं फैज अहमद फैज ने।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को फिल्म हैदर में? आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार में विशाल भारद्वाज द्वारा संगीत

बद किए कुछ गीत। श्रोता, हम बात कर रहे हैं विशाल भारद्वाज की। उनकी फिल्मों की एक खासियत रही है गहरी कहानी, बेहतरीन संगीत और अलग तरह की प्रस्तुति। विशाल भारद्वाज एक शानदार संगीतकार हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है और उनके जो गाने हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। उनका संगीत भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला होता है। विशाल भारद्वाज को उनके उत्कृष्ट काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। और उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज भी एक प्रसिद्ध गायिका हैं। दोनों ने मिलकर कई बेहतरीन गीत दिए हैं। विशाल भारद्वाज भारतीय सिनेमा के एक ऐसे निर्देशक और संगीतकार हैं जिन्होंने अपनी अनोखी सोच और रचनात्मकता से फिल्मों को एक नया आयाम दिया। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज और भावनाओं की गहराई को भी दर्शाती हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म माचिस से। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही संगीतकार में, विशाल भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध किए गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्या से। आवाजें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। एक ही संगीतकार में विशाल भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध किए गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म मकबूल से। आवाजें हैं दिलेर मेहंदी, राकेश पंडित और साबिर खान की। बोल लिखे हैं गुलजार ने।

ये सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, लकी अली और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चुपके से, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही संगीतकार अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन सभा में शाम 4 बजे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं। हमारे संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पर व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है?

0: बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। सो जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का जी। तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का। लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी।

0: बिल्कुल
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: प्यारे दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो भी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया, प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी,

0: लगता है ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एफओस एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था, और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
1: Oh, that's so amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
0: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
1: रनिंग?
0: जी हाँ। ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। तो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था
1: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना
0: हो सकता है
1: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
0: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है, ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
0: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी. क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही कैपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
1: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, यह बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूप

0: में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
1: रिपब्लिक
0: डे परेड,
1: हाँ जी,
0: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
1: ओह वंडरफुल।
0: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
1: पूरे 14 किलोमीटर।
0: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
1: ट्रू।
0: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
1: जी,
0: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। awesome. और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।

0: और ये जो पांच जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
0: सिर्फ
1: है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ,
0: माय गॉड.
1: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे, और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है,
0: जी
1: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
0: हाँ.
1: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
0: ओह
1: हूं।
0: माय गॉड.
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस

0: इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना, जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए?

0: आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है. तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है. उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे. क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर. और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से.

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर

0: वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे
0: जी
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है। बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी देंगे बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। पहले बात करते हैं बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPEGEL। श्रोताओं, भारत में लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर रही। कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक रूढ़ियों और जागरूकता की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPEGEL योजना शुरू की। यह योजना विशेष रूप से उन बालिकाओं के लिए बनाई गई थी जो शिक्षा से वंचित थी या बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा देकर उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है। यह योजना 2003 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इसे मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया। ग्रामीण भारत में कई समस्याएं थी, जैसे लड़कियों की कम साक्षरता दर, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ना, बाल विवाह, घरेलू कामों का बोझ, स्कूलों की दूरी, समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच। इन परिस्थितियों में लड़कियां शिक्षा से दूर हो जाती थी, इसलिए सरकार ने विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर लड़की को स्कूल तक पहुंचाना, लड़के और लड़कियों के बीच शिक्षा का अंतर कम करना, जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी थी उन्हें दोबारा पढ़ाई से जोड़ना, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को शिक्षा देना और गाँवों में शिक्षा का वातावरण तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गाँव में स्कूल खोले गए जहां स्कूलों की कमी थी। जो लड़कियां दिन में काम करती थी उनके लिए रात की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को दोबारा मुख्य शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाए गए। कुछ विद्यालयों को विशेष सुविधा के साथ विकसित किया गया। बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु महिला शिक्षकों को बढ़ावा दिया गया और गाँवों के लोगों और अभिभावकों को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। योजना के लाभों की श्रोताओं अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लड़कियां स्कूल जाने लगी, शिक्षा प्राप्त कर बालिकाएं आत्मनिर्भर बनने लगी, लोगों की सोच में परिवर्तन आया और लड़कियों की शिक्षा को महत्व मिलने लगा। शिक्षा के कारण कम उम्र में विवाह की घटनाएं कम हुई और शिक्षित बालिकाओं के लिए भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आइए अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में। भारत में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया था। इस योजना का शुभारंभ 2006-2007 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यह योजना अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। तब इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदाय के बीच लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। नामांकन के रुझान को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में लड़कों की तुलना में विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। KGBV का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूह की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो। इसके बाद आइए अब बात करते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना यानी IDMI की। अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास के लिए मुख्य रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास यानी IMID की योजना चलाई जा रही है। यह योजना निजी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को सुगम बनाना और औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे विकसित किए जाते हैं। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। वे निजी सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान जो 3 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं इस योजना के पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत भी 229 से अधिक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास यानी IDAI के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं रेडियो से जुड़े हमारे श्रोता गौरव वर्मा के अनुभव।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी जानते हैं आकाशवाणी अपने 90 सालों का जश्न मना रहा है और ये केवल जश्न ही नहीं है श्रोताओं, एक उपलब्धि है, क्योंकि तब से लेकर आज तक बिना रुके बिना थके आकाशवाणी अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखे हुए है। आकाशवाणी ने अपने इन सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, रेडियो के साथ टीवी का आना, FM चैनलों का विकसित होना और अब तकनीकी की दुनिया में कदम रखना और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना। आकाशवाणी ने कभी हार नहीं मानी और बेहतर गुणवत्ता के साथ अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी क्रम में आइए आपको सुनवाते हैं हमारे एक श्रोता के विचार।
1: मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मुझे आज लगभग 15 साल रेडियो सुनते हुए हो गए हैं और खुशी की बात यह है कि आज आकाशवाणी के 90 साल भी पूरे हो चुके हैं। मुझे याद है मैं जब 24 साल का था तब से और आज तक भी मैं आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र सुनता आ रहा हूँ। मेरी यह कहानी तब से शुरू हुई जब मैंने पहली बार आकाशवाणी के एक कार्यकर्ता श्री सुंदरलाल गंधर्व जी, जो कि एक बहुत बड़े बांसुरी वादक हैं, और उनकी इस बांसुरी की धुन को सुन सुन कर ही मैंने इस धुन से प्रेरित हुआ और मैंने तब से आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र सुनना शुरू किया और मुझे 3 से 4 बार आकाशवाणी के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मुझे याद है मैंने अपनी पहली कविता सन 2001 और 2 अक्टूबर में गाई और आज तक मुझे उसके बोल भी याद हैं। वो बोल इस प्रकार थे, जब गौरव ने अन्याय मचाया, बोलो कौन सामने आया, बना कौन भारत का नेता, कोटि कोटि का हृदय विजेता। आकाशवाणी के रूप में औपचारिक प्रसारण की शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी, जिसे पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। हालांकि भारत में रेडियो प्रसारण की नींव 23 जुलाई 1927 को निजी तौर पर रखी गई थी। 1957 में इसका नाम आधिकारिक रूप से आकाशवाणी कर दिया गया, आज जिसको हम AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना करते हैं। तब से लेकर और आज तक आकाशवाणी अपनी सेवाओं को निरंतर जारी रखे हुए है। आज के इस तकनीकी के समय में जहां हम रेडियो की बात करते हैं, तब हमने यह सोचना नहीं पड़ता कि हम रेडियो कैसे सुने। आज इस तकनीक के समय में रेडियो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, रेडियो के हमें सेल लाने की जरूरत नहीं है। चूंकि आज का दौर स्मार्टफोन का दौर है और रेडियो हम अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने दादाजी के साथ उस समय से रेडियो सुन रहा हूं जब रेडियो के बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। उसमें 4 बड़े सेल पड़ते थे और उसको मेरे दादाजी सारे दुनिया की न्यूज को सुना करते थे। सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद को सुना करते थे और आज हम आकाशवाणी को लाइव सुन रहे हैं। आप देखें कि हमारी तकनीक ने कितनी तरक्की कर ली है। आज हम आकाशवाणी को लाइव सुन रहे हैं, वो भी अपने अपने फोन के माध्यम से। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं भी बताऊं। मैं एक बार 2025 में उज्जैन गया था और वहाँ मेरे से पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने उनको बताया कि मैं नजीबाबाद से आया हूँ। मैं उनके चेहरे को

0: समझ नहीं पाया। फिर मैंने उनको बताया कि आपने हरिद्वार का नाम सुना है। उन्होंने कहा, हरिद्वार का नाम सुना है लेकिन मैं रेडियो सुनता हूँ और उस रेडियो में नजीबाबाद का आकाशवाणी केंद्र आता है। मेरा गर्व से सीना चौड़ा हुआ जब उन्होंने ये बात कही कि आप उस शहर से आए हैं जिस शहर से मैं रेडियो पर ये बात सुनता हूँ कि हम नजीबाबाद के आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी के 90 सालों का उत्सव हमने अपने फोन पर लाइव देखा, सुना, वो भी फेसबुक व इंस्टाग्राम के माध्यम से। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, परंतु उस उत्सव को मैंने लाइव देखकर दिल से महसूस किया। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी मेरी तरह नजीबाबाद का आकाशवाणी केंद्र जरूर सुने। धन्यवाद।
1: गौरवशाली आकाशवाणी का ये 90 सालों का सफर एक इतिहास है जो हम सब ने एक साथ मिलकर जिया। आकाशवाणी केवल भारत के रेडियो स्टेशन ही नहीं है बल्कि देश का गौरव, आन बान और शान है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर रेडियो से जुड़े हमारे श्रोता गौरव वर्मा के अनुभव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। कंट्री वाइड और इनसाइड्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा माधुरी भरतवाल का लिखा नाटक बंदी। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गायी कव्वाली। छाया गीत शाम 6:55 पर और शाम 6:45 पर सुनेगा 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता मनन नारंग से रेणु कोटनाला की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनिएगा आस्था और बदलता पर्यावरण से संबंधित कार्य पगडंडी आध्यात्म से पर्यटन की ओर। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत। अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर गुफ्तगु बस यूं ही और लव स्टोरी साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर। फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर सुनेगा कल रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम कल रात्रि 8:00 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों की गाई नात। छाया गीत कल शाम 6:55 पर। कानूनी सलाह कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनेगा एडवोकेट खुर्शीद मोहसिन जैदी से एस के नोटियाल की बातचीत। विषय होगा कैसे मिले आम आदमी को शीघ्र न्याय। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे गन्ना किसान भाइयों की गन्ना फसल संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज। ये शाम गजलों के नाम आपका सितारा लव स्टोरी और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5:00 सुनिएगा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी। विषय होगा मिशन इंद्रधनुष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिल्मी कव्वालियां आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30।

पर लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुनेगा सुरेंद्र राजेश्वरी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर क्रम होगा थारी पसंद। श्रोता बहनों की फोन कॉल्स पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर और 12:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनेगा विदुषी परवीन सुल्ताना का गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग शुद्ध सारंग। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: ये गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज देवता ने सीधे धरती पर ब्रांच खोल ली हो।
1: बिल्कुल, घर से बाहर निकलो तो लगता है मुफ्त में तंदूर सेवा चालू है, और ऊपर से बिजली चली जाए तो इंसान खुद को पापड़ समझने लगता है।
0: लेकिन दोस्तों, इस तपती गर्मी में अगर कोई चीज दिल को सुकून पहुंचाती है या ठंडक देती है, तो वो है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: जी हाँ, जहाँ बातें हो मजेदार, जानकारी हो दमदार और मस्ती हो एकदम शानदार।
0: सो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सना।
1: और मैं हूँ आपकी अपनी साथी शिवानी, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी।
0: फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज आप सुनेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है। आज गुफ्तगू बस यूं ही लव स्टोरीज, बूस्टर्स और नॉन फिल्मी चार्टबस्टर के साथ खूब सारा एंटरटेनमेंट।
1: सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट बूझो तो जाने के सवाल के साथ।
0: बूझो तो जाने में आज का सवाल रहेगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है?
1: और फ्रेंड्स, इस सवाल का आपको सही जवाब देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: दोस्तों, हमें रहेगा आपके ढेर सारे मैसेजेस का इंतजार। तब तक के लिए आइए आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हंसाएंगे आप, मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: डॉक्टर साहब।
7: अरे अरे अरे राजू, क्या हुआ भाई?
6: अरे डॉक्टर साहब, वो जो तुमने दवाई दी थी ना, उससे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा।
7: अच्छा, वैसे राजू एक काम और करा करो, तुम ना अनार का जूस पिया करो, उससे ना तुम्हारा खून बढ़ेगा।
6: ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो अनार का जूस ही पीऊंगा।
7: अरे राजू आओ बैठो जरा।
6: जी डॉक्टर साहब।
7: अरे कैसे हो?
6: अरे डॉक्टर साहब, अनार का जूस तो मुझे इतना महंगा पड़ा, 70 रुपए का ग्लास पीकर मेरे 250 ग्राम खून और सूख गया।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
8: तो सो सेगमेंट कुछ खास है आज में। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन वर्सेस मूड, काम कब करें।
9: यानी काम तब करें जब मूड हो, या फिर मूड हो या ना हो, काम करते रहना चाहिए।
8: अब ऑनेस्टली बताओ दोस्तों, हम सबने कभी ना कभी ये लाइन तो बोली ही है, यार अभी मूड नहीं है।
9: होमवर्क, मूड नहीं है। रूम क्लीन करना, मूड नहीं है। एक्सरसाइज कल से पक्का, और पढ़ाई, उसके लिए तो मूड होने में कभी कभी पूरा सीजन निकल जाता है।
8: लेकिन इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि सक्सेसफुल लोग हर काम मूड देखकर नहीं करते।
9: बिल्कुल, अगर क्रिकेटर बोले आज प्रैक्टिस का मूड नहीं है, या सिंगर बोले आज गाने का मूड नहीं, तो शायद वो कभी सक्सेसफुल ही ना बन पाए।
8: और यही आता है डिसिप्लिन, मतलब जो जरूरी होता है वो करना, चाहे मन करे भी या ना करे।
9: और सच कहें तो डिसिप्लिन शुरुआत में बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन बाद में वही लाइफ को इजी भी बना देता है।
8: क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं दोस्तों, तो प्रेशर कम हो जाता है।
9: जैसे एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब देखकर शॉक लगने से अच्छा है रोज थोड़ा पढ़ लो।
8: मूड इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नो डाउट। गुड मूड में काम जल्दी हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है।
9: लेकिन अगर सिर्फ मूड पर वेट करेंगे तो कई चांसेस हाथ से निकल सकते हैं।
8: कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि काम शुरू करने के बाद खुद ही मूड बन जाता है।
9: बिल्कुल, बस शुरुआत करनी पड़ती है, बाकी फ्लो अपने आप आने लगता है।
8: तो फ्रेंड्स, आज का छोटा सा लाइफ लेसन यही है कि मूड टेम्परेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन फ्यूचर बनाता है।
9: अब

0: अरे ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली at 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं।

0: बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हंसाएंगे आप, मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
5: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
8: अरे भाई टिंकू, क्या हाल है तेरे?
9: बस भैया, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से कुछ याद ही नहीं आ रहा, सब भूल रहा हूँ मैं तो।
8: अरे टिंकू, कुछ तो याद होगा, जरा जोर डाल दिमाग पे, कुछ तो याद होगा तुझे।
9: हाँ बस वो बीवी का नाम याद है मुझे मेरी।
8: अरे टिंकू, भगवान ने तेरा पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया फिर भी वायरस रह गया।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
8: फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे प्यार भरे सेगमेंट लव स्टोरीज का, जिसमें आज आप सुनेंगे लव स्टोरी गुनाहों के देवता का एपिसोड नंबर 4,
9: और जिसे लिखा है हमारी साथी शुमायला ने। दोस्तों ये बात आपको बता दें, धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता का रूपांतरण है आज की ये लव स्टोरी।
10: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हाँ तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
11: तो आप सुन रहे हैं लव स्टोरी गुनाहों का देवता एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने जाना है कि कैसे सुधा और चंदर अपनी मोहब्बत को इस समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं, कैसे चंदर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता और सुधा बेचारी अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान अपने दिल में लिए विदा हो जाती है। सुधा चली गई और उसके साथ चंदर की जिंदगी की सारी रौनक भी। अब वही कमरा था, वही मेज, वही किताबें, मगर सब कुछ बदल चुका था। पहले जिस कमरे में सुधा की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी रहती थी। चंदर घंटों किताबें खोल कर बैठा रहता मगर पढ़ कुछ नहीं पाता। हर पन्ने पर उसे सुधा का चेहरा दिखाई देता, कभी उसकी हंसी, कभी उसकी नाराजगी, तो कभी वो आखिरी विदाई। बेचारा चंदर अब समझने लगा था कि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, वो पूरी जिंदगी बन जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो इंसान सिर्फ अकेला नहीं होता, अधूरा हो जाता है। इसी खालीपन के बीच चंदर की मुलाकात हुई पम्मी से। पम्मी आधुनिक सोच वाली, बिंदास, खुलकर जीने वाली लड़की। उसकी बातें सुधा से बिल्कुल अलग थी। जहां सुधा की मोहब्बत में मासूमियत थी, वहीं पम्मी के बिहेवियर में एक खुलापन था। चंदर तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो भाई? पम्मी क्या मैं उदास दिखता हूँ? दिखते नहीं हो, महसूस होते हो। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जा पाते। पम्मी चंदर तो भूल क्यों नहीं जाते उन्हें? कुछ यादें भुलाई नहीं जाती, बस इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। पम्मी चंदर को समझने की कोशिश करती रही मगर वो नहीं जानती थी कि चंदर का दिल अब भी इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में भटक रहा था जहां सुधा की हंसी बसती थी। चंदर ने खुद को समझाने की कोशिश की, उसे लगा शायद नई बातें, नए लोग उसके दर्द को कम कर देंगे, मगर मोहब्बत का दर्द शोर से नहीं, सिर्फ सच से खत्म होता है। तुम जानते हो चंदर, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है?

0: क्या है पम्मी, तुमने हमेशा दिल की जगह दिमाग को सुना। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चंदर कभी कभी बहुत ज्यादा आदर्श इंसान को अकेला कर देता है। बस ये बात चंदर के दिल में उतर गई, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगा था कि जिसे वो त्याग समझ रहा था असल में वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर उसने एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद आज उसकी जिंदगी इतनी खाली ना होती। मोहब्बत अजीब चीज है ना पम्मी। कैसे? जब पास होती है तो इंसान डरता है उसे खोने से, और जब दूर चली जाती है तो पूरी जिंदगी उसी को ढूंढता रहता है। चंदन अब टूट चुका था, मगर इस टूटने ने उसे एक सच सिखा दिया था कि मोहब्बत सिर्फ त्याग नहीं मांगती, कभी कभी उसे स्वीकार करना पड़ता है। वरना कुछ रिश्ते पूरी जिंदगी दिल में रह जाते हैं, मगर हाथों में कभी नहीं आ पाते।
1: Excuse me.

0: दोस्तों, इसी के साथ अब आप सुनेंगे हमारा अगला सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही। पुनः प्रसारण चरम घाघर से श्रेया विश्वास की बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा सेगमेंट गुफ्तगू और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया विश्वास। गुफ्तगू मतलब एक ऐसी बातचीत जो दिल से की जाए और दिल तक पहुंचाए, और इसी दिल से दिल तक की बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़े हैं चरम। चरम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेगमेंट में।
2: सबसे पहले मैं श्रेया और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया है। इट इज वेरी नाइस टू बी हियर श्रेया, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी हियर।
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा चरम, आप हमें ये बताइए कि आपका पहला एक्सपीरियंस है ऐसे माइक पे आने का?
2: यस, जी हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है और हमारे श्रोताओं से जुड़ने का मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है जिससे मैं अपनी बातचीत उन तक पहुंचा पाऊंगा, जिसकी मुझे बेहद खुशी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ये सेगमेंट भी ऐसा है कि हम अपनी बातें जो करते हैं वो दिल से करते हैं।

0: सकते हैं, और जो बातें दिल से की जाती है दोस्तों वो दिल तक क्यों नहीं पहुंचती। अच्छा चरम, बातें करने से पहले थोड़ा हमारे जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा नाम चरम घाघट है और मैं नजीबाबाद निवासी हूँ, और फिलहाल ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जो कि मैंने बायोलॉजी से किया है। और मैं अगर अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था, और 2025 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है।
0: अच्छा चरम, अपनी फैमिली में, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: जी, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरी एक बड़ी दीदी हैं, मेरा एक छोटा भाई है, और मेरे दादाजी हैं, और हमारा बहुत क्यूट सा एक पेट डॉग है।
0: अच्छा आप आगे क्या करना चाहते हैं?
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट श्रेया, आई एम रियली वेरी कन्फ्यूज अबाउट माई करियर राइट नाउ, क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरा जो दिलचस्पी है वो म्यूजिक में बचपन से रही है, क्योंकि हमारे घर का माहौल संगीत प्रेमी वाला रहा है। मेरे फादर हैं, उनको शुरू से म्यूजिक का बहुत शौक रहा है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, दैट्स वाई उन्होंने हमें बचपन से ही म्यूजिक के माहौल में रखा है, बचपन से हम म्यूजिक में ही पले बड़े हैं। मेरी दीदी और मैं बचपन से ही गा रहे हैं, बजा रहे हैं, शुरू से ही दीदी को हारमोनियम वादन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मुझे तबला वादन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। दीदी ऑफिशियली गाना चाहती हैं, उनको गाना बहुत पसंद है, और एज अ हॉबी मुझे भी गाना बहुत पसंद है। श्रेया, स्ट्रीम वाइज अगर देखा जाए तो मुझे अपना करियर साइंस में चुनना चाहिए, पर अगर मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट आपको बताना चाहूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरा आने वाला भविष्य है, मेरा करियर म्यूजिक में ही हो। दैट्स वाई आई एम कन्फ्यूज के मुझे आगे जो भी करना है या तो वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर वो म्यूजिक से।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। अच्छा आपने कहा कि आपको सिंगिंग का शुरू से ही शौक था, मतलब आपको अपना करियर भी उसमें देखते हैं। अच्छा सिंगिंग के अलावा आपको कुछ, आपकी कोई और भी शौक है?
1: जी हाँ, सिंगिंग के साथ साथ मुझे तबला बजाना बहुत पसंद है, मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है, और कभी कभी मैं कहूंगा कि मुझे कुकिंग करना भी बहुत पसंद है।
0: ओके, तो आपको कुकिंग भी पसंद है।
1: हाँ जी, और ये भी कह सकते हैं कि मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है बचपन से।
0: अच्छा आपको ड्राइंग नहीं, आपको स्केचिंग पसंद
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: हमें थोड़ा अपने बारे में और बताइए, जो आपने सिंगिंग का बताया कि आपको सिंगिंग का बचपन से शौक था, आपने आपकी फैमिली में सारे सिंगिंग से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा कुछ उस जर्नी के बारे में हमें बताइए।
1: जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मुझे संगीत का और कविता का और कला का बहुत शौक रहा है। इसी बीच में ये भी बताया मैंने आपको कि हमारे घर का माहौल बहुत ही संगीत प्रेमी रहा है, मेरे पिताजी को, मेरे फादर को बहुत पसंद था म्यूजिक, शुरू से ही गाते आ रहे हैं, मेरे जन्म से भी पहले, तो जब से हमने होश संभाला है तब से पापा गा रहे हैं हमारे सामने। साथ में फिर मेरे से बड़ी जो दीदी हैं वो पापा को देख के उन्होंने गाना शुरू किया, वो बहुत ही मीठा गाती हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ, और मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ और आशा करता हूँ कि और आगे सुधार होगा। मैं अपनी अगर जर्नी के बारे में बात करूँ तो जिस वक्त मैं शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त मेरे फादर ने हमारी दीदी जो है और मुझे म्यूजिक क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया था, जिसमें वो उन्होंने भेजा था दीदी को गायन के लिए, जिसमें वो हारमोनियम प्ले करती थी और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही थी, और मैं ले रहा था तबला वादन की, जो कि बहुत ही नया और रोमांचक लग रहा था मुझे उस वक्त। काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इसमें और काफ़ी समय भी देना पड़ता है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक के लिए। तबले में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मैं गायन में अच्छा नहीं था ये मैं कहना चाहूँगा, तबला मुझे गायन से थोड़ा सरल लग पाया। हमारे गुरुजी थे जिनका नाम था उस्ताद कयूम खां साहब, जो अभी हमारे बीच नहीं है, जिनका मुझे बहुत अफसोस है, पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, और 6th स्टैंडर्ड से लेके मोस्टली 12th स्टैंडर्ड से पहले पहले मैंने अपना प्रभाकर कंप्लीट कर लिया था, जो होता है 6 साल का तबला वादन में, और दीदी का भी संगीत में गायन में प्रभाकर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री दैट आई एम स्टिल विद म्यूजिक।
0: ये बहुत अच्छी बात है जो आपने लास्ट में कहा कि आप स्टिल विद म्यूजिक हैं, पर हम आपसे एक गाना जरूर सुन सकते हैं, अपने लिसनर्स को गाना जरूर सुनवा सकते हैं, तो अगर कोई गाना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे लिसनर्स के साथ।
1: तो मैं आपको पहले थोड़ा गाने के बारे में बता देता हूँ, ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ हमारे श्रोताओं के लिए, एक गज़ल है जिसका नाम है रफ्ता रफ्ता, जो कि है मेहंदी हसन साहब की। अभी पिछले साल मैंने इसको सर्दियों में सुना था, जो कि एक बहुत ही फेमस गज़ल रही है, सभी की लोकप्रिय होगी, मैं मुझे ये भी पता है कि हमारे मोस्टली श्रोताओं ने वो सुना होगा, वो मैं आपके सामने कुछ गुनगुना के आपके सामने पेश करना चाहूँगा, अगर कोई भी त्रुटि हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

0: गए। धन्यवाद।
1: बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत ही प्यारी लगी आपकी गजल हमें, और मुझे यकीन है हमारे जो दोस्त सुन रहे होंगे इस समय उन्हें बहुत अच्छी लगी होगी आपकी ये गजल। अच्छा, आपने हमें ऑप्शन दिया था कि फीमेल वॉइस भी गा सकते, तो एक लता जी का गाना अगर हो जाए तो।
0: पहले तो मैं श्रेया आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। जैसे कि आपने अब फरमाइश रखी है आप कोई फीमेल सॉन्ग सुनना चाहेंगे, तो डेफिनेटली मैं लता जी का एक सॉन्ग लेना चाहूँगा जो काफ़ी पुराना है, क्योंकि मेरी पसंद कुछ पुराने गानों में ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं नए गाने नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिला है, अगर आपने मुझे ये मौका दिया है इस मंच पर आने का, तो मैं पुराने हमारी यादों को ताज़ा करूँ। तो श्रोताओं के लिए एक गीत और प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि है लता जी का। ये गाना है अनपढ़ फिल्म का, जिसे फिल्माया गया है माला सिन्हा और धर्मेंद्र जी पर। गाना कुछ ऐसे है।

0: बहुत ही प्यारा, मतलब वाओ, वेल
1: थैंक
0: डन,
1: यू।
0: आपने बहुत ही प्यारा गाना गाया है, बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आपको पोएट्री का भी शौक है,
1: जी
0: तो अब आए हैं और बात आई है, उठी है पोएट्री की, तो एक आध पोएम तो आपकी हम जरूर सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो मेरे 6th स्टैंडर्ड से पहले पहले लिखी हैं। सिक्स
0: अच्छा
1: स्टैंडर्ड के बाद मैक्सिमम 8th स्टैंडर्ड तक मैंने बहुत कम कर दिया था, और 8th स्टैंडर्ड के बाद फिर मैंने शायद कभी नहीं लिखा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मुझे याद है। पर मेरी मोस्टली कविताएं हिंदी में ही रही हैं, और बहुत ही बच्चों वाली कविता रही, मैं साफ कह देता हूँ आपसे। वैसे तो ऐसा हुआ है हमेशा, मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं आज तक, मुझे कभी अपनी कविता याद नहीं रही है। जो मेरे मन में आता है वो मैं उसको कागज़ पर उतार देता हूँ, लेकिन मुझे एक कविता याद है, और वो भी मुझे इस वजह से याद है क्योंकि कविता बहुत ही प्रिय है मुझे, बहुत ही विशेष है, उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं बता देता हूँ कि वो कविता मेरी पहली कविता रही है श्रेया, जिस वजह से वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि वो बच्चों के लिए है वो कविता, जिसके पीछे कहानी है कि मैंने उस कविता को कैसे लिखा।
0: तो क्या पहले आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे कि आप कविता के पीछे कहानी सुनाना चाहेंगे?
1: मैं आपको पहले कहानी सुनाना चाहूंगा श्रेया, कि कैसे मेरे मन में ख्याल आया, मेरी आंखें जो देख रही हैं, वो जो आंखें देख रही हैं उसको मैं कागज पर उतारूं, उसको शब्दों में पिरो दूं। तो पहले मैं आपको, अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि वो क्या दृश्य रहा, क्या सीन रहा, जिसको देखकर मेरे मन ने कहा कि उसको शब्दों की माला में पिरो देना चाहिए और कागज़ पर उतार देना चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा था, गर्मियों की दोपहर थी, मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, मेरे घर वाले अंदर थे और मैं थोड़ा बाहर, मैं शुरू से ही थोड़ा

0: आवारा किस्म का रहा हूँ। मैं
1: हाँ
0: घर के बाहर था, घर हमारा काफी अच्छी जगह पर था, बहुत हरियाली थी उधर। तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो शायद पीपल का पेड़ था, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। और उसके पास ही एक टूटी हुई दीवार थी जिसके ऊपर हमने पंछियों के लिए एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें हम पानी रखते थे, उसके पास हम उनके लिए कुछ खाने के लिए रखते थे। तो वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई पंछी, कोई ना कोई छोटा जानवर हमें ज़रूर दिख जाता था। एक दिन मैं बाहर बैठा था, घूमने गया था, उसके बाद मेरा मन नहीं लगता था घर में, तो मैं बाहर बैठा रहता था। दोपहर में हवा चल रही थी तो मैं हवा खा रहा था। मैंने देखा कि उस पानी के बर्तन के पास एक गिलहरी, एक कौवा और एक कोयल बैठे हैं, जिसमें पीपल के पेड़ पे एक चील बैठी है और पास में से तोते उड़ के जा रहे हैं और उनमें से कुछ दाना खा रहे हैं, उनमें से कुछ पानी पी रहे हैं। जो सीन मुझे बहुत, जो दृश्य मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई फेल्ट सो गुड, उसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विचारों को कागज़ पर उतारने की कोशिश करूं। तो उसमें त्रुटियां काफ़ी हुई, पर वो एक रॉ कविता रही है मेरे लिए, मैंने अनछुई रही है, मैंने उसमें ज़्यादा उसको फिल्टर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मेरी पहली कविता है, इसीलिए जो मैं अब मेरे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और कविता शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कविता का नाम रखा है बसंत पार्टी, जो श्रोताओं को सुनकर पता चल गया होगा कि काफ़ी बचकाना किस्म का टाइटल है मेरी कविता का, जो है बसंत पार्टी। कविता कुछ इस तरह है कि बसंत आने पर मनोरम बगीचे में लगी है एक पार्टी, बसंत आने पर मनोरम बगीचे में लगी है एक पार्टी, कौवे भैया नहाते पानी के टब में, बुलबुल बैठी कविता सुनाती, तोता राम है खाते मिर्ची, चील चोंच पर धार लगाती, सारे पंछी करते मस्ती, मस्ती करते सारे पंछी, सारे पंछी मिलजुल कर बसंत पार्टी की शोभा बढ़ाते, अपने आपसी व्यवहार से जैसे इंसानों को खूब चिढ़ाते।
1: बहुत ही प्यारी कविता थी आपकी, और कविता का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, बसंत पार्टी। और आप कह रहे हैं कि आपने थर्ड या फोर्थ क्लास में, मतलब थर्ड और फोर्थ क्लास का बच्चा अगर इतनी अच्छी लिखता है, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी और भी अच्छी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
0: थैंक यू सो मच श्रेया।
1: सेगमेंट का एंड हमें करना है, लेकिन एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपने कहा कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद है,
0: जी
1: लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक नया गाना चुनना हो, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं परफॉर्मेंस देनी है, यहीं पे परफॉर्मेंस देनी है, और आपको कोई नया गाना चुनना हो, तो वो किस सिंगर का होगा और वो गाना कौन सा होगा?
0: देखिए, ऐसे स्पेसिफिक किसी सिंगर का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभी हम इस लायक भी नहीं हुए हैं कि हम किसी सिंगर के बगल में खड़े होके या उसके साथ खड़े होके हम परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन हाँ, ये है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। नए सॉन्ग्स में अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे परफॉर्मेंस देनी है

0: बहुत ही अच्छा गाया, लिटरली बहुत अच्छा गाना गाया आपने।
1: थैंक यू सो मच अगेन श्रेया, इतनी तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है, आशा है श्रोताओं को भी मेरा ये गाना बहुत पसंद आया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पसंद आया होगा हमारे श्रोताओं को। अच्छा, आपको कैसा लगा ये हमारा सेगमेंट गुफ्तगू, हमारी गुफ्तगू कैसी लगी आपको?
1: मुझे पर्सनली श्रेया, हमारी जो गुफ्तगू रही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म पर आकर एक्सपीरियंस करना, और श्रेया के साथ बातचीत करने में मुझे बहुत मज़ा आया, और श्रोताओं से जुड़कर भी मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं यही आशा करता हूँ कि श्रोताओं को भी मुझसे जुड़कर काफ़ी खुशी हुई होगी, और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शरम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, और इतना प्यारा प्यारा गाने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी आवाज सुनाने के लिए हमें। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ हम करते हैं इस सेगमेंट का अंत। तो दोस्तों, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और दिल से दिल तक की बातें करते रहिए। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल। सवाल था, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही जवाब है कानपुर।

0: अग्रेजा निसार सलमानी राजकुमार डूडी बी आई धाकड़ जाकिर मंसूरी शकील अहमद इदरीसी विट्ठल सुरेशी
1: मोहम्मद सईद अब्बासी, अल्ताफ हुजरे, बलवंत कुमार वर्मा, दिलशाद हुसैन, मिसबा शमसी, सदाशिव, मोहम्मद आमिर अंसारी, रवि कुमार राहुल, संजय दिंगमिया, गजानन येले, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजवीर सिंह यादव, अभिजीत, परवीन चौहान, अरविंद कुमार, खिल्लू परवेज, एमडी यासीन अंजान, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद रफीक पवार, धीरज भाई और मुकेश कश्यप। दोस्तों, इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत संगीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए भेज सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
2: अब इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त शिवानी
1: और मुझे यानी अपनी साथी सना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राजी खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत करते हैं और भाई अपने खेतों में फसल उगाते हैं और फसलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं। भाई देखो गेहूं की कटाई के बाद हमारे खेत खाली पड़े हैं। कुछ हमारे भाइयों ने तो भैया अपने खेतों में भैया जुताई करके पलेवा करके भैया देखो हरे चारे की फसल बो दी होगी, चाहे चरी की हो या भैया मक्का की हो या अन्य कोई फसल हो भैया हरे चारे की, क्योंकि भाई हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने पशुओं के लिए और भाई अपने पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन हमारे किसान भाई लेते हैं। भाई जिन भाइयों ने हरे चारे की फसल नहीं बोई है तो वो भैया इस समय अपने खेत की एक गहरी जुताई कर दें, क्योंकि भाई आंधी तूफान चल रहे हैं, बूंदाबांदी भी हो रही, तो खेतों में नमी इस समय ऐसी इतनी बढ़िया हो रही है कि भाई आप अपने खेत की जुताई एक गहरी कर दोगे तो भाई वो गहरी जुताई भी हो जाएगी, साथ ही साथ भैया हमारे खेतों की मिट्टी का जो है भैया एक तरह से उपचार भी हो जाता है, क्योंकि भाई जब धूप पड़ती है गहराई तक धूप जाती है तो भैया जो हमारी मिट्टी में कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं भैया वो नष्ट हो जाते हैं। तो भाई इस तरह से हमारे किसान भाई अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना लेते हैं। दूसरे भाई कुछ हमारे किसान भाई जो ज़्यादा जागरूक हैं और भाई जागरूकता की दृष्टि से वो अपने खेतों में फसल चक्र अपनाते हैं तो भाई वो इस समय जो है हरी खाद की फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई जब भी हमारे किसान भाइयों को समय मिले हम तो ये बात कहेंगे कि आप जो है अपने खेतों में हरी खाद की फसलों को आप आवश्यक रूप से उगाएं। भाई हरी खाद में कौन कौन सी फसलें आती हैं भाई? देखो इस समय ढेंचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं, रबी मौसम में आप बरसीम लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, ये भाई मुख्य फसल हैं। जिन फसलों को हमारे किसान भाई हरी फसलों के रूप में लेते हैं और भैया इन फसलों को समय से भैया वेजिटेटिव स्थिति में अपने खेत में जोत कर भैया अपने खेत में हरी खाद यानी कि जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो भाई जब देखो जीवांश कार्बन की मात्रा हमारे खेतों में बढ़ जाएगी तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों के जो खेत हैं वो उपजाऊ हो जाएंगे और जब उपजाऊ हो जाएंगे तो भाई हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बनेंगे और जब आत्मनिर्भर हमारे किसान भाई बनेंगे तो भाई हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो भाई इस तरह से देखो आत्मनिर्भर जब किसान होता है तो भाई हमारे किसानों की जो हालत है वो भैया अच्छी होती है। जब हम अपनी खेती से जुड़ी जानकारी नहीं होगी तो तब भैया तब तक भैया हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो भैयों हम जो है आर्थिक तकनीकी और उत्पादन की दृष्टि से मजबूत होना है, स्वावलंबी बनना है, तभी देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस तरह से भैया जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा तो भैया देश आत्मनिर्भर होगा। भाइयों बहनों स्थानीय उत्पादन और ग्रामीण उद्योगों जैसे कि भैया पशुपालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ या भैया मछली पालन हुआ, जिन हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं और अपना के भैया अच्छा लाभ अपनी फसल से कमा सकते हैं, कुल मिलाकर अगर हम यो बात कहें कि भाई आधुनिक खेती जैसे कि इंटरक्रॉपिंग में भैया एक मुख्य फसल लगा दी, दूसरी हमने ऐसी फसल लगा दी जिससे भैया हमारे किसान भाइयों को धीरे धीरे निरंतर आमदनी बनी रहे, चाहे भैया हम सब्जी ले लें मौसम या भैया अन्य कोई दलहनी फसल ले लें, तो भाई इस तरह से जो है हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है निरंतर बढ़ती रहती है और बढ़कर भैया हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बन जाते हैं। साथ ही साथ भाई आज हम देखते हैं कि जब हमारे किसान भाई सब्जियां लेकर बाजार में जाते हैं तो भाई इससे जो है जब हमारे किसान भाइयों को बाजार की जानकारी होगी तो भाई जो बिचौलिया होते हैं बाजारों में उनकी जो संख्या है वो भी भैया घट जाएगी, यानी कि उनके चक्कर में हमारे किसान भाई नहीं आएंगे। तो भाई इस तरह से भी हमारे किसान भाई जो है आजकल भैया आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरे भाई यदि हम बात करें जो हमारी फसल अपने खेतों में खड़ी है हमारे भाई, उनका हम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाना है, ताकि भैया जो ये दैविक आपदाएं आती हैं जैसे इस समय आंधी आ रही, खूब आंधी चल रही, खूब बारिश पड़ रही है, कहीं कहीं ओले ही पड़ रहे हैं, तो भाई इनसे जो हमारी फसल को नुकसान होता है उससे भैया हमारे किसान भाइयों का बचाव हो जाता है, उसका हमारे किसान भाइयों को भैया एक मुआवजा बतौर मिल जाता है जिससे भैया हमारे किसान भाई नुकसान होने से बच जाते हैं।

0: और भाई दूसरी बात यो है, जो हमारे भाई युवाओं को भी हमें कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि भाई जो हमारे युवा हैं वो भैया खेती किसानी से दूर जा रहे हैं और घूमने की तरफ जा कर रहे हैं भैया, कि घूमने चल रहे हैं हम तो फलानी जगह। तो भाई इस तरह से हम जो है अपनी खेती किसानी को आधुनिक करना है, साथ ही साथ जो हमारे आसपास बाजार है उसकी मांग के अनुसार अपने खेतों में फसल उगानी है। और जब इस तरह से हम जो है भैया कार्य करेंगे अपनी खेती किसानी का, तो भाई हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो भाइयों देखो, इस तरह से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। तो ये तो कुछ बातचीत होगी, देखो आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत की। भाई अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई आज किसान भाइयों को थोड़ी सी बात और बता दें कि भाई आज है मई माह का दूसरा बृहस्पतिवार, और दूसरे बृहस्पतिवार को हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुनते हैं जो कि हमारा मासिक कार्यक्रम होता है पगडंडी। तो भाइयों कार्यक्रम पगडंडी की बात भी करेंगे, लेकिन भाई कार्यक्रम में इस समय लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: भाइयों संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है सभी का हमारे कार्यक्रम में। और भाई हम बात कर रहे थे मासिक कार्यक्रम पगडंडे की। तो भाइयों इस मासिक कार्यक्रम में हम आपके लिए हर माह एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा विषय लेकर आते हैं जो हमारे किसान भाइयों की आज भैया खेती किसानी हो, या भैया हमारा पर्यावरण हो, या भैया हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें, तो भाई वो हमारे लिए एक विशेष भैया विषय होता है और विशेष ही हमारा ये कार्यक्रम होता है। तो आज भी हम अपने किसान भाइयों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं जो कि भैया हमारे किसान भाई हमारे कार्यक्रम में जानेंगे। तो भाई आइए सुनते हैं ये आस्था और बदलता पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम पगडंडी। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों जैसा आप सभी जानते हैं कि आज है मई माह का दूसरा गुरुवार और आज आप सुनते हैं हमारा मासिक कार्यक्रम पगडंडी। इस पगडंडी कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ विशेष जानकारी। तो आज के इस पगडंडी कार्यक्रम के साथ में मैं हूं आपका भैया जितेंद्र कुमार, और मेरी सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। भाइयों बहनों पगडंडी कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक और हमें समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है। भाइयों बहनों अच्छा कार्य करने की निरंतर प्रेरणा देती रहती है। भाइयों बहनों आज हम देखते हैं हमारे तीर्थ स्थलों जैसे कि चार धाम हो, स्वर्ण मंदिर हो, या वैष्णो देवी हो, या फिर बोध गया हो, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भाई इन सभी स्थानों पर

0: जाने के लिए हमारे मन में विचार आते रहते हैं और हम इन सभी तीर्थ पर जा भी रहे हैं। भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हमें इन तीर्थ स्थलों पर जाने से क्या क्या लाभ हैं। यदि हम बात करें कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो भाई हमारे मन को शांति मिलती है और शांति के साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाता है। हमें उस स्थान की संस्कृति, खान पान, पहनावे की भी जानकारी मिलती है। हमारी उस राज्य की सरकार को आर्थिक लाभ होता है। भाइयों, आज हम पगडंडी कार्यक्रम में जानेंगे अध्यात्म से पर्यटन के लाभ और हमारे समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो भाई, हमने अध्यात्म के संबंध में जाना गुरु गद्दी दरबार फुलसंदा जनपद बिजनौर सतपुरुष बाबा श्री सुधीर बाबा जी से कि अध्यात्म क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है। तो गुरु जी, इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को आप दीजिए।
1: देखिए, जहाँ तक उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो परमात्मा सब जगह व्यापक है, भूत भविष्य वर्तमान सब उसी में अधिष्ठित हैं। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या आत्मा को उस परब्रह्म की तरफ को ले जाना। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे हमारे महापुरुषों ने तप किया है, साधनाएं की हैं, यज्ञ वगैरह किए हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र और आदरणीय माने जाते हैं। जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ में बहुत कम लोग जानते, मैं तो समझता हूँ जानते ही नहीं है कि वो स्थान भगवान शिव का समाधि स्थल है। वहाँ उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा था।
0: जी जी जी।
1: तो ऐसी जगह जब लोग जाते हैं ना
0: जी,
1: तो बहुत कम लोग, मेरे विचार से 1-2% महात्मा वगैरह ऐसे होंगे
0: जी,
1: जो वहाँ पे ध्यान साधना अपने आत्मा के प्रकाश को बढ़ाने के लिए जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं जो श्रद्धा के कारण जाते हैं
0: जी।
1: और जैसे महानगरों से जाते हैं, आपका दिल्ली है, राजधानी है हमारी, तमाम लोग दिल्ली से जाते हैं और अपना वहाँ पे एक तरह से पिकनिक जैसी मनाते हैं
0: जी जी।
1: तो कहने का मतलब है लोगों के मन में परमात्मा की आराधना, ध्यान साधना, ये तो 1% है
0: जी।
1: मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है,
0: बिल्कुल
1: है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना, एक तरह की पिकनिक मनाने के लिए वो लोग जाते हैं और उनपे पैसा बहुत है
0: जी,
1: पैसा खर्च करके आते हैं। दूसरे, ये समय व्यापारियों के लिए गोल्डन पीरियड होता है,
0: जी,
1: है?
0: जी।
1: जो पहाड़ के लोग हैं उनकी भी बहुत ज्यादा इनकम होती है
0: जी।
1: इधर से मैदानों से भी लोग अपने अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं
0: जी,
1: वो ले जाते हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा पूरे साल का वो इस थोड़े से उसमें कमा लेते हैं
0: जी।
1: तो आध्यात्म का आपने जो नाम लिया, तो आध्यात्म साधना, आत्मा की साधना, परब्रह्म से अपने आत्मा को मिलाने वाले लोग तो बहुत कम हैं
0: जी,
1: लाखों में ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन तो इससे पर्यावरण पे भी कैसा असर पड़ता है, कोई अच्छा असर नहीं पड़ता
0: जी।
1: वो जो वहाँ की शांति भी भंग होती है
0: जी।
1: और जो जल हैं, नदियां हैं, वे भी दूषित होती हैं।
0: तो
1: मैं ये नहीं कह रहा कि जाना नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जाना चाहिए, लेकिन जब हम तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं, ऐसे महान स्थलों पे हम जा रहे हैं, तो हमारी आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: है, न कि ये आप सोच एक हफ्ता दो हफ्ता वहां पे एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट के लिए वो जगह नहीं है। उससे एक वहां का ओरा जो है ना, ओरा प्रभा मंडल, वो दूषित होता है और जो हमारी महान आत्माएं हैं वो ऐसे लोगों को आशीष नहीं देती
0: जी।
1: है, वहां जाएं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जाएं, परम ब्रह्म के मंत्र को जपें, साधना करें, अधिक से अधिक ध्यान करें, तब तो जाना उचित है। भौतिकता उनमें बढ़ती चली जाती है और जितनी ज्यादा भौतिकता हमारे जीवन में होती है उतना दुख हमें प्राप्त।
0: बड़ी अच्छी जानकारी सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने अध्यात्म के संबंध में दी। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक स्थलों को जहाँ के नाम मात्र लेने से अंतर्मन को एक अलग ही अनुभूति होती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर माँ गंगा जी की आरती, बद्रीनाथ चार धाम में से एक केदारनाथ, भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग और तिरुपति बालाजी देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है। भाइयों बहनों, इन सभी स्थलों में प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी महत्ता है, क्योंकि अध्यात्म हमारे देश में आदिकाल से चला आ रहा है। ये धरती ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक तपस्या से ओतप्रोत है। इन सभी में काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। भाइयों बहनों, ये तो अध्यात्म की बात थी। अब अध्यात्म से पर्यटन एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवधारणा है, और इन हमारे तीर्थ स्थलों पर क्यों इतनी भीड़ हो रही है, इसी क्रम में, इसी कड़ी में हमने बात की गुरुगद्दी दरबार के सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों से। भाइयों बहनों,
1: एक बड़ी भीड़ जो है वो केवल पिकनिक मनाने जाते हैं
0: जी।
1: दो महीने का ये अवकाश है लोगों के पास
0: जी।
1: इसमें आप देखिए साउथ में क्यों नहीं जाते
0: जी।
1: लेकिन यहाँ जो हमारे लोग पहाड़ों पे जाते हैं ना, ये पिकनिक के लिए जाते हैं
0: जी।
1: और वहां वो उन नियमों के पालन भी नहीं करते। जो सस्ती चीजें होती हैं उनकी 10 गुना दाम बढ़ा देते हैं
0: जी,
1: मार्केट वाले, दुकान वाले। तो हर एक आदमी का मतलब माइंड ऐसा हो जाता है कि तू मतलब यहाँ से भौतिक लाभ प्राप्त कर ले
0: जी,
1: ये उनका उद्देश्य होता है
0: जी।
1: अब रोज तो आदमी घूमते नहीं, कभी कभी उसको मौका मिलता है
0: जी, जी।
1: इन दिव्य स्थलों पे जाने का।
0: जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी अध्यात्म से पर्यटन की ओर के संबंध में हमारे श्रोताओं को दी, और आपकी जानकारी सुनकर जो भी हमारे श्रोता या हमारे भाई बहन इन तीर्थ स्थानों पर जाएंगे तो वो भविष्य में आस्था लेकर ही वहां जाएंगे। जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुभमस्तु, शुभमस्तु।
0: भाइयों बहनों, हमने अध्यात्म के बारे में जाना। अध्यात्म का सीधा अर्थ है अपने मन को जानना, मन की शांति और जीवन के उद्देश्य को समझना। भाइयों बहनों, अध्यात्म बहुत ही पुरानी परंपरा है। योग, ध्यान और साधना इसके मुख्य हिस्से हैं। भाइयों बहनों, जब हम आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए यात्रा करने लगते हैं तो ये आध्यात्मिक पर्यटन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, आज हम अध्यात्म को पर्यटन में बदलते देखते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी भागदौड़ भरी है, हम मानसिक तनाव में रहते हैं, तो हम एक दिन या दो दिन के लिए आस्था के केंद्र, चाहे स्वर्ण मंदिर हो, वैष्णो देवी हो, या फिर ऐसे तीर्थ स्थल हो जिनमें बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, जहाँ हमें इन तीर्थ स्थलों पर घूमने के लाभ होते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान भी है, चाहे हमारी पर्यावरण की दृष्टि से हो या भैया हमारी संस्कृति की दृष्टि से कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। भाइयों, पर्यटन बढ़ने से कचरा, प्लास्टिक, प्रदूषण बढ़ता है। भाइयों, अधिक पर्यटक बढ़ने से स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली बदल सकती है। तीर्थ स्थलों के पर्यटन करने से होने वाले नुकसान के संबंध में हमने जाना पर्यावरणविद श्री सुबोध कुमार वर्मा जी से, जो कि प्रख्यात पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, सहयोगी विश्व विख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के सहयोगी हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण पर पर्यटन के प्रभाव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: तो आपको साधुवाद, आपके श्रोताओं को साधुवाद कि इस चर्चा में हम सब लोग शामिल हैं। अब जो इंसान है आज का, वो अहम और बहम में जी रहा है अहम इस बात का है कि

0: मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वहम ये है कि सब कुछ मेरा है,
1: बिल्कुल सर,
0: मैं
1: बिल्कुल।
0: मालिक हूँ, और मैं जिस जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, प्रकृति के हैं, और उन सब का मैं मालिक हूँ, और उसका मैं अपनी मनमर्जी से उपयोग करूँगा।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये जो एक भ्रांति है उसके मनुष्य के मन में,
1: जी
0: वही आज जो पर्यावरण के संकट हैं हम लोगों के सामने, उस रूप में वो सामने दिख रही है।
1: बिल्कुल सर।
0: भले ही चाहे विकास कितना भी किया हमने, लेकिन सभ्यता और संस्कृति उसको हमने दाव पे भी लगा दिया,
1: बिल्कुल सर।
0: और बची कुची का जो कमी है वो हमारे मोबाइल की जो एक संस्कृति तेजी से प्रचलित हुई है,
1: जी
0: उसमें सेल्फी लेने का क्रम। अब मंदिर में जाने के बाद भी आस्था तो दम तोड़ गई,
1: बिल्कुल।
0: और सेल्फी भगवान के साथ में लेके जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है इंसान।
1: जी
0: तो ये व्यवस्था जो है, ये शुभ संकेत तो नहीं है। आज जो है उसको पर्यटन की स्थिति की दृष्टि से विकसित कर दिया, उन क्षेत्रों को,
1: जी
0: पहाड़ों को काट दिया है ना, वहाँ सड़कें पहुँच गई हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी
0: तो इस सब में क्या है कि जहाँ जहाँ मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है, तो अपनी भोगवादी प्रवृत्ति से मनुष्य जो है वो प्रकृति और उसके संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग भी करता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: ये मतलब एक प्रवृत्ति बन गई है इंसान की, और उसी के अनुरूप वहाँ जाता है, जब पहाड़ों में जाने के बाद, मंदिरों में जाने के बाद
1: जी
0: स्वच्छता का भी ध्यान नहीं है, पॉलिथीन वहाँ पर डाले जा रहे हैं।
1: जी
0: आप देखेंगे कि हमारे ग्लेशियर जो हैं वहाँ पॉलिथीन और इस तरह की चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन
1: जी
0: का जो दुष्परिणाम है हम लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमको जो है समाज में मिलकर एक चेतना लाने की ज़रूरत है,
1: बिल्कुल सर।
0: और वो जन जागृति हो समाज के बुद्धिजीवी वर्गों में, एक इस तरह की भावना हो कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए।
1: बिल्कुल।
0: जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी काम है और चिंतन है, विचार मंचों के माध्यम से उनको बढ़ावा मिले,
1: जी
0: ताकि समाज में एक जन जागृति आए। और वातावरण की बात है कि जो हम बहुत से काम ऐसे हैं कि जो चाहे अनचाहे
1: जी
0: हम लोग ऐसा कर देते हैं कि जिससे प्रकृति को बहुत भारी नुकसान होता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि पॉलिथीन के अलावा जो जमीन है, जमीन में रासायनिक के अलावा कुछ ले ही नहीं रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जानबूझ के अनजाने में प्रयोग कर रहे हैं।
1: जी
0: तो खान पान की जो पूरी एक जो पौष्टिकता थी वो समाप्त हो गई है।
1: जी
0: आप कितने भी अच्छे से चाहें कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें बहुत शुद्ध प्राप्त की हैं
1: जी
0: और उनका उपभोग किया है, तो वो एक वहम है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक अनुशासित जीवन हो, और उसके साथ में आप जो हैं प्रकृति और पर्यावरण के साथ में संयमित व्यवहार करते हुए आप आगे चलें,
1: जी
0: तो वही आपकी सुखद जीवन का स्थायी, उसमें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी,
1: जी
0: संतुष्टि भी मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जितना प्रकृति कट्टा चला गया है ना इंसान, वो अपने लिए मुसीबत पैदा करता चला गया है।
1: बिल्कुल
0: तो हमको अगर ये सब चीज़ें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हमको जो चीज़ें अच्छी सोच के साथ में करनी चाहिए,
1: जी
0: उसके लिए हमको प्रकृति के सानिध्य में लौटना होगा,
1: बिल्कुल
0: और प्रकृति के अनुकूल ही जो जीवन शैली है उसको अपनाना होगा।
1: बिल्कुल
0: तभी हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा।
1: जी
0: अब उस चीज़ का क्या मतलब, देखिए सब कुछ तो है आपके
1: जी
0: पास, सारी व्यवस्था है, पैसा है, दौलत है,
1: जी
0: लेकिन मैं कहूँ आपके जीवन से अगर दो चीज़ों को हटा दें तो आपके पास बचेगा क्या?
1: बिल्कुल।
0: दोनों चीज़ें प्रकृति ने दी हैं और निःशुल्क दी हैं, उसका कोई पैसा कहीं पर खर्च नहीं करना है।
1: जी
0: अगर हवा और पानी को, इन दो चीज़ों को हम मनुष्य के जीवन से हटा दें,
1: जी
0: तो बाकी सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: तो प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों को ये चीज़ समझनी है कि प्रकृति है तो हम हैं। अगर प्रकृति संकट में है तो फिर हमारे ऊपर जो संकट है उनसे कोई बचाने वाला
1: नहीं।
0: नहीं है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और जो हमारे नव युवक या नौजवान साथी आज आपको कार्यक्रम में सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इस जानकारी का और शिक्षा का अपने जीवन में लाभ भी लेंगे।

0: और अपने अपने परिवार के जन हैं उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे। तो सर जैसा हमारा आज विषय भी है अध्यात्म से पर्यटन की ओर के संबंध में, तो इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को, हमारे नवयुवाओं को और जो हमारे श्रोता आज कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: उन सभी के लिए मेरा संदेश यही है कि आप प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली आपको ऐसी है जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है, आपकी आवश्यकताओं की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनके
0: जी
1: साथ में जीने के लिए, आपको आगे बढ़ ले जाने के लिए वो आवश्यक हैं,
0: जी
1: उसको आप अपनाएं।
0: बिल्कुल
1: और मेरा विशेषकर स्कूलों में एक बच्चों से एक ये आग्रह है
0: जी
1: और अपील है,
0: जी
1: शिक्षकों से भी अपील है कि शिक्षा के साथ साथ जो है प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण संबंधी काम, पर्यावरण के प्रति,
0: बिल्कुल
1: वन्य जीवों के प्रति जो एक संवेदनात्मक कार्य हैं उन सबको आगे बढ़ाएं,
0: बिल्कुल सर
1: ताकि अगर बच्चे और समाज, उनके माता पिता, शिक्षक समाज स्कूलों से अगर ये संदेश देता है
0: जी
1: तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव तेजी के साथ आ सकता है।
0: बिल्कुल। भाइयों बहनों, पर्यटन के पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में हमने जाना सुबोध कुमार वर्मा जी से कि किस तरह से हमारे जो श्रोता हैं, हमारे नवयुवक हैं भैया, वो शांतिपूर्वक अपने तीर्थ स्थलों पर यात्रा करें। अध्यात्म से पर्यटन की ओर की इस कड़ी में हमने बात की अंजलि वर्मा, जो कि प्रधानाचार्य हैं वैश्विक शिक्षा विभाग में और जिनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए बात करते हैं कार्यक्रम में श्रीमती अंजलि वर्मा से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जैसा मैडम आज हमारा विषय है अध्यात्म से पर्यटन की ओर, विषय से ही जैसा अपना टॉपिक एक अपने आप को दर्शा देता है, तो इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगी?
2: जैसा आपका विषय है अध्यात्म से पर्यटन की ओर, ये जो हमारा भारत देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा
0: जी
2: है,
0: जी जी
2: और हमारे जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वो जो वन में जाते थे उनका बस ये था कि हमको शांति मिले
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: और अध्यात्म को बढ़ावा मिले।
0: बिल्कुल
2: लेकिन आजकल का जो है वो विषय एकदम बदल गया है।
0: जी
2: आजकल जो हमारी पीढ़ी है वो सिर्फ एक पर्यटन की वजह से इन तीर्थ स्थलों पे जाना पसंद करती है या
0: जी
2: वनों में जाना पसंद करती है।
0: जी जी
2: आपकी बॉटल्स हैं, आपके रैपर्स हैं, वो सब छोड़ के आएंगे, उनको ये नहीं पता कि ये जानवर खा के बीमार होंगे या कैसे करके हमारा पर्यावरण दूषित होगा।
0: बिल्कुल
2: हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम पर्यटन के लिए किसी भी जगह पर जा रहे हैं, चाहे वो घूमने की जगह हो या
0: जी
2: भगवान का मंदिर हो,
0: बिल्कुल
2: हमें एक तो वहां अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है
0: बिल्कुल मैडम
2: और दूसरा हमारी जो मानसिक शांति के लिए जब हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं
0: जी जी
2: तो वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि घूमना फिरना। घूमने फिरने से क्या है कि आदमी गया, फोटो लिया और वापस आ गया,
0: बिल्कुल
2: तो उसको शांति वाली तो कोई फीलिंग आएगी नहीं, ना ही उसको कहीं शांति मिलेगी।
0: बिल्कुल
2: लेकिन आप पहले ये मन बना ले कि हाँ, मैं अगर उस जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: आपका जो व्यवहार है, जो आपकी जीवन शैली है, वो एकदम संयमित होनी चाहिए
0: बिल्कुल
2: ताकि उसका जो असर है वो दूसरी पीढ़ी पर सकारात्मक पड़े।
0: बिल्कुल मैडम, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और जो हमारे नौजवान साथी आपको सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का लाभ उठाएंगे। और जैसा कि पर्यटन की बात जब आती है तो पर्यटन आजकल तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और घूमने की दृष्टि से ही जाते हैं और पर्यावरण के प्रति जो है वो नहीं सोचते हैं कि किस तरह से हमारा पर्यावरण इससे प्रभावित होगा या हम क्या चीज वहां पर छोड़ कर आ रहे हैं। तो अच्छा, जैसा आपने पर्यावरण की बात की और हमारी जो जीवन शैली है वो बदलती जा रही है, तो मैडम हम जो है इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी और आपसे चाहते हैं कि जो हमारा पर्यटन है वो किस तरह से, जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लाभ तो होता ही है, लेकिन जब लाभ होता है तो अगर उसको किसी काम की अति हो जाती है तो उसका जो है नुकसान भी होता है, तो नुकसान को किस तरह से हम समझते हैं?
2: सब लोगों को चाहिए कि एक तो जब वो वहां जाते हैं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल
2: हमारे देश में आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी स्वच्छता पर बहुत जोर दे रहे हैं।
0: बिल्कुल मैडम
2: और दूसरा, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो विकास के साथ साथ आप प्रकृति के साथ विनाश मत कीजिए।
0: जी जी जी बिल्कुल
2: जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आप एक शांति प्राप्त करने के लिए वहां जाइए।
0: बिल्कुल
2: पर्यटन के लिए आप जाइए, घूमिए फिरिए, सब काम करिए, लेकिन अपना जो परिवेश है उसको स्वच्छ जरूर रखेगा, अपनी तरफ से कोई भी कमी वहाँ मत छोड़ के।
0: बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। अच्छा, चलते चलते कार्यक्रम में आप क्या संदेश इस संबंध में आप देना चाहेंगी?
2: मेरा मानना ये है और आप सब लोगों से कहना भी ये है कि आप जब भी पर्यटन की ओर जाएं तो थोड़े आध्यात्मिकता के साथ अपने लेकर जाइए और वहाँ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बने, किसी के लिए कोई कमी ना बने।
0: बिल्कुल, नम आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आपकी जानकारी का हमारे श्रोता अपने जीवन में लाभ भी लेंगे और आपकी जानकारी कहीं ना कहीं जो भी हमारे श्रोता हमारे नौजवान साथी सुन रहे हैं वो इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आप
0: भाइयों बहनों। अध्यात्म से पर्यटन की ओर इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि अब यात्रा सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि मन की शांति और आंतरिक संतुलन पाने का मुख्य उद्देश्य है। भाइयों बहनों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम पगडंडी। अब कार्यक्रम सुनते रहिए कृषि जगत। अभी हमारे भाइयों ने कार्यक्रम सुना पगडंडी। भाइयों, आध्यात्म से पर्यटन की ओर के संबंध में आपने जाना कि हमारा जो आजकल हम मंदिरों पर अपने तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं तो वो हमारा एक कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से अधिकतर हमारे किसान भाई हों या हमारे नौजवान साथी हों वो घूमने जा रहे हैं। भाई देखो, हमने पूरी इस यात्रा में जाना कि भाई हम जो है मन की शांति के लिए इन तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, न कि भाई पर्यटन के लिए। यदि पर्यटन के लिए भी हम जा रहे हैं तो भाई हम जो है अपनी तरफ से किसी तरह को जो पर्यावरण है हमारा उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो भाई देखो, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये तो आप हमें लिखोगे ही, लेकिन भाई हमारे किसान भाई कह रहे होंगे कि भाई बातचीत ही करेंगे या कुछ कार्यक्रम में मनोरंजन भी कराएंगे, तो बिल्कुल भाई आपको बिना देर किए लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं राजा हरीश चंद के किस्से से यो प्यारी सी रागनी।

जीते जी बेटे तेरी मालन, वो मेरी महतारी मिल जाएगी। भाइयों ने भी भुवनेश गिरी से भैया राजा हरिश्चंद्र किस्से की जो प्यारी सी रागनी सुनी। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान हमारे किसान भाइयों की उतर गई होगी। और भाई देखो, आजकल हम देख ही रहे हैं कि भैया मौसम जो है आंधी तूफान वाला हो रहा है, कहीं कहीं भैया ओलावृष्टि भी हो रही, कहीं भैया छुट मुट वर्षा भी हो रही है। तो भाई ये चिट्ठी हमें मौसम की मिली है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। भाई चिट्ठी के अनुसार आने वाली 17 मई तक का हाल इस चिट्ठी में है भैया। तो देखो, इस चिट्ठी के अनुसार भैया आप अपनी फसलों का, यानी कि जो भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं या कद्दू वर्गीय फसलें हैं या भाई हम कह दें बेल वाली फसलें हैं, उन पर भैया यदि हम हरा फुदका कि भैया छिड़काव कोई दवाई का करना है या किसी तरह का कोई नियंत्रण करना है, तो भैया आप मौसम को देख कर ध्यान में रख कर भैया सारे काम करो। साथ ही साथ भाइयों, इस चिट्ठी के अनुसार आने वाले दिनों में आप मौसम की जानकारी से अपडेटेड रहिए, क्योंकि भाई आजकल हमारे सभी किसान बहन भाइयों के पास जो है बड़े फोन हैं, तो भाई वो मौसम से अपडेटेड रहते भी हैं। और जिस किसी फसल में भैया किसी भी कोई स्प्रे भी करना है या फोलियर स्प्रे करना है, तो भाई उसका स्प्रे आप मौसम को देखते हुए करें। तो भाई ये तो थी कुछ मौसम की चिट्ठी। और भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है भैया, ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है भैया 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। और भाई आपका जो कोई भी सुझाव हो या आप हमारे कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं या भाई हमारे कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी हो, तो आप हमें अवश्य चिट्ठी पत्र लिखें। साथ ही हमारा एक मोबाइल नंबर है भाई, वो मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9457072888। भाई इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और जो भी आपकी समस्या है या आप सुझाव चाहते हैं, तो भाई वो हमें आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर आप एक बार फिर सुन लें, 9457072888। और भाई अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाइयों से बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो भाइयों अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। श्रोताओं, रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्व

0: होने के उपलक्ष्य में सुनिए विशेष भेंट वार्ता मनन नारंग से रेणु कोटनाला की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एक बहुत ही युवा श्रोता मनन, और आइए आपको रूबरू कराते हैं मनन से। तो मनन, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मनन, आज आकाशवाणी पर आप आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ आकर?
2: काफी अच्छा लगा, मतलब अभी तक बचपन से हम रेडियो सुनते थे, तो यहाँ पे आके काफी कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, और काफी अच्छा लग रहा है।
1: आकाशवाणी की तरफ से जो वॉकेथन का आयोजन किया गया, इस इवेंट में आप किस तरह से पहुंचे?
2: मैं देहरादून से सुबह निकला नियर अबाउट 4:30, और हम यहाँ पे पहुंचे 7:30 के अराउंड, तो बाय हम अपने व्हीकल से ही आए इधर।
1: कैसे जानकारी मिली आपको कि यहाँ इस तरह का इवेंट हो
2: तो
1: रहा है?
2: भैया ने बताया था इस इवेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे करके इवेंट हो रहा है और 90 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो आपको आना है और यहाँ पे पार्ट लेना है इसमें, और मतलब वॉकेथन होगी तो आपको साथ जुड़ना है हमारे।
1: तो बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, तो वॉकेथन में आपको कैसा लगा आकर?
2: काफी अच्छा लगा, यहाँ पे यूनिटी को देख के और यहाँ का माहौल देख के काफी बढ़िया लगा।
1: मनन, आपको मालूम है कि ये जो इवेंट था, ये क्यों आयोजित किया गया?
2: ये 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इस पे ही ये इवेंट हुआ।
1: बिल्कुल, श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में आकाशवाणी की तरफ से वॉकेथन का आयोजन किया गया, और मनन इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आकाशवाणी आए। मनन, आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन में रेडियो का क्या महत्व है?
2: रेडियो तो बचपन से हम सुनते ही आ रहे हैं, जैसे हम कहीं रात के समय ऐसे मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो जैसे कि बाहर भी जाते थे तो अपनी गाड़ी में ही जाते थे, तो पापा मम्मी रेडियो पे ही रेडियो चला देते थे और गाने सुनते थे उस पे हम, और वहाँ से शुरुआत हुई है बचपन में। और एक बार की बात मुझे याद है कि नानी जी ने मतलब मम्मी को रेडियो गिफ्ट करा था, तो मम्मी रेडियो का इस्तेमाल करते थे और मैं भी कोशिश करता था कि क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है, उसमें भी काफ़ी मैं छेड़ाखानी करता था कि कैसे क्या है। और एक प्रोग्राम आता था महिला जगत करके दोपहर के समय, तो उस समय तो मम्मी जब खाना बना रहे होते थे सुनते थे अच्छे से, उस समय तो सुनते भी नहीं थे हमारे कि क्या हो रहा है, बहुत ही लगन से सुनते थे उसमें कुकिंग के बारे में बता
1: रहे थे। मम्मी आपकी बात नहीं सुनती थी?
2: नहीं, उस समय सुनते ही नहीं थे।
1: यानी मम्मी को ये जो प्रोग्राम है महिला जगत बहुत पसंद है।
2: हाँ जी, हाँ जी, उन्हें काफी पसंद था और बिल्कुल ही मतलब अच्छे से सुनते थे और अपना काम भी करते रहते थे और साथ साथ ये सुनते भी रहते थे।
1: कभी मम्मी ने डांटा कि प्रोग्राम सुनते हुए अगर कभी आप मम्मी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो मम्मी डिस्टर्ब हुई है या आपको डांट पड़ी हो?
2: हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ बोल दिया मैंने कि खाना दे दो, स्कूल से आया हूँ, थक गया हूँ, तो बोल देते रुक जा सुनने दे, अभी कुछ बोल रहे हैं, 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, तो जब तक वो प्रोग्राम चलता रहता था तो तब तक इतनी नहीं सुनी जाती थी।
1: तो मनन, कभी गुस्सा नहीं आया कि ओफो मम्मी तो रेडियो के चक्कर में हमारी बात ही नहीं सुन रही है?
2: नहीं नहीं, ऐसे कभी गुस्सा तो नहीं आया, और थोड़ी देर बाद फिर बात बात कर ही लेते थे कि तब जब पूरे दिन तो उन्हें समय नहीं होता था कि पूरे दिन किचन में काम, घर को संभालना, सुबह हमारे को स्कूल भेजना, तो इतना समय होता ही नहीं था उनके पास, तो वही रेडियो पे किचन में वो सुनते रहते थे अपना काम करते करते, और फिर रात में भी नहीं देख पाते थे सीरियल्स वगैरह, तो रेडियो पे ज्यादा एक्टिव रहते थे।
1: मनन, मम्मी ही घर पर रेडियो सुनती हैं या बाकी घर पर और कौन कौन है जो रेडियो सुनते हैं?
2: पापा सुनते थे पहले, तो जैसे कि पापा को काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट का शौक है, तो जैसे कि पहले ये टेलीविज़न वगैरह भी नहीं होते थे, तो अब पापा अपनी बचपन की भी कहानियाँ बताते हैं हमारे को कि कमेंट्री सुनने को मिलती थी, कहीं बाहर मैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हर एक एक अपडेट मिलते थे, और लोग रेडियो पे सुन के सेलिब्रेट कर रहे होते थे, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते थे, और वहीं से स्पिरिट शुरू हुआ है लोगों का स्पोर्ट्स से और अपने क्रिकेट से भी।
1: बिल्कुल मनन, एक वो दौर था जब हर घर में भी रेडियो नहीं होता था, और लोग जिस घर में रेडियो होता था ना, तो वहीं इकट्ठा हो जाते थे और चौपाल जैसी बनाकर एक रेडियो पर सब कान लगाकर बहुत ही ध्यान से सुनते रहते थे कि अब उनका फेवरेट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है,
2: फेवरेट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और या फिर कह लो कोई फेवरेट मैच उनका है, तो पूरी कमेंट्री सुनते थे, एकजुट होकर काफी सारे लोग हो जाते थे और काफी अच्छा माहौल बन जाता था, और वो समय भी काफी मतलब कहना चाहूंगा रियल था। अब के समय पे लोग अलग अलग रूम से अपने फोन पे देख रहे होते हैं कुछ प्रोग्राम वगैरह, उस समय पे इकट्ठे रहते थे, अब सब लोग दूर होते जा रहे हैं, अकेले अकेले होते जा रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन मनन एक चीज और है कि जब पहले ये होता था कि रेडियो कुछ एक घर में ही होता था, है ना, अभी तो रेडियो सबकी पॉकेट में है, सबके हाथों में है, मालूम है आपको।
2: हाँ जी हाँ जी, ये तो मालूम है, अपने फोन से भी आप कहीं पे भी बैठे हुए आप आराम से सुन सकते हो रेडियो।
1: तो मनन आप ऐसा करते हैं?
2: मैं ऐसा करता हूँ जैसे गाने वाने सुनने के लिए, और कभी ऐसा हो रहा होता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को कुछ गाने सुनने हैं, पुराने गाने सुनने हैं, ऐसे कि पुराने गाने सुनने का मैं बहुत शौकीन हूँ, किशोरदा के गाने मैं सुनने पसंद करता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है मेरे को पुराने गाने सुनने में, पुराने गाने सुन के काफ़ी ज़्यादा मतलब आनंद मिलता है, और थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति सी हो गई है, अच्छा मौसम हो रहा हो, बारिश हो रही हो, जैसे देहरादून का मौसम ही अच्छा रहता है हमेशा, तो ऐसे मौसम में मज़ा आता है पुराने गाने सुनने में।
1: यानी मनन रेडियो पर पुराने गाने भी सुनते हैं।
2: पुराने गाने का शौक है मेरे को, और वो भी एक समय पे सुनता हूँ मैं, पर लेकिन जब भी सुनता हूँ तो मेरा दिमाग काफ़ी शांत हो जाता है, क्योंकि पुराने गाने हैं ही इतने प्यारे, उनकी लिरिक्स कह लो, उनके शब्द कह लो, और वो मतलब उनका बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो, कुछ भी कह लो, आवाज़ इतनी प्यारी है पुराने सिंगर्स की, वो दिल को भा जाती है।
1: अच्छा मनन, आपसे जानना चाहेंगे सोशल मीडिया के जमाने में रेडियो सोशल मीडिया से कैसे अलग है और क्या खास है?
2: सोशल मीडिया पे जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता दिया जाता है, और रेडियो पे ऐसा नहीं होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, और सोशल मीडिया पे ऐसे होता है कि कुछ भी मतलब किसी ने कोई अफवाह फैला दी वो फैल जाती है और लोग सच मान लेते हैं बहुत जल्दी देख के उसे। रेडियो पे ऐसा नहीं होता है, रेडियो पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल रियल मिलती है आपको, और कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता, जो बात होती है वो पूरी बात सही बताई जाती है, और अगर वो बात सही नहीं होती है तो वो बोली ही नहीं जाती है वहाँ पे।
1: विजुअल और ऑडियो दोनों में क्या पसंद है आपको और दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया विजुअल है तो रेडियो ऑडियो पर काम करता है।
2: जी अगर विजुअल की बात करें तो सामने अगर कुछ वीडियो चल रही है तो वो भी चीज़ अच्छे से समझ आती है, पर लेकिन अगर ऑडियो से देखा जाए तो ऑडियो से भी सुन के इंसान समझ जाता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और विजुअल भी अगर मतलब अगर आप सामने आपकी वीडियो चल रही है और वो वीडियो कुछ ऐसी है कि वो इन्फॉर्मेशन उसमें सही नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको पास हो रही है, तो उसका विजुअल का भी कोई फायदा नहीं है, और ऑडियो में अगर आपको जैसे रेडियो में आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो आपके काम की है, आपको बेनिफिट कर रही है वो चीज़, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, और रेडियो उन उन जगहों पर भी चलता है जहाँ पे कई बार प्रॉपर सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, तो आराम से आदमी सुन सकता है उसका अपना, जैसे कि विजुअल का अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है आपको नेट रिचार्जेस वगैरह कराने पड़ते हैं, बहुत कुछ कराना पड़ता है, और विजुअल कंटेंट कंज्यूम कर करके इंसान का दिमाग फॉग हो जाता है और काफ़ी
1: बिल्कुल
2: ज़्यादा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, ऑडियो कंटेंट आपको रिलैक्स्ड रखता है और आप एक समय तक सुनते हो और थोड़ा समय आप सुन के अपना काम भी कर लेते हो और काम करते करते भी सुन लेते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वीडियो देखने के लिए वहीं बैठना होता है और अगर कुछ अचानक से काम आ जाए तो उसको पॉज ही करना पड़ेगा,
2: पॉज ही करना पड़ता
1: है
2: है,
1: ना?
2: और लोग विजुअल कंटेंट भी मतलब खाते समय भी वो देखने लग जाते हैं, और अगर ऑडियो कंटेंट सुन रहे हो आप, आपका ध्यान उसमें भी नहीं है, मतलब आप सुन रहे हो और अपना आप काम भी कर
1: करें।
2: पा रहे हो, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होएगा उससे।
1: तो चलते चलते आप आकाशवाणी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव यहाँ का कैसा रहा?
2: अनुभव मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा यहाँ पे, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा
1: जी,
2: और काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई और काफ़ी अच्छा लगा।
1: आगे आप आने वाले हैं आकाशवाणी दोबारा?
2: जी ज़रूर, तो आपसे मैं एक और बात बताना चाह रहा था, जैसे कि मेरी मम्मी हैं वो काफ़ी मतलब मानती हैं, पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करती हैं, और मेरे को भी यही बोलती हैं कि कॉलेज में होता हूँ सुबह मंदिर चले जाया करो, आज ट्यूसडे आज मंदिर चले जाया करो, तो रेडियो के से अगर मेरे को बहुत अच्छे से एक चीज़ याद है, सुगम संगीत आता था शाम के समय, तो इस समय मम्मी क्या कहते हैं भजन सुन रहे होते थे, और वहीं से आदत है हमारे को भी भजन सुनने की, और वही भक्ति में लीन होने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है अगर ये सब चीज़ें घर से ही चलती आ रही हों।
1: हम सबकी ये कोशिश होती है कि अपने हर तरह के श्रोता के लिए हम कार्यक्रम लेकर आएं। अगर कोई श्रोता बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहते हैं तो हमने उनके लिए भजन प्ले करते हैं, सुबह भी भक्ति संगीत का
2: सुबह
1: कार्यक्रम
2: भी आते हैं
1: वंदना आता है तो उसमें भी भजन होते हैं। युवाओं के लिए हमारे यहाँ से युववाणी प्रोग्राम में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, खासतौर पर करियर संबंधी भी हम उनको जानकारियां युवाणी प्रोग्राम से देते हैं। मम्मी की तो आपने खासतौर पर बात बताई कि महिला जगत कार्यक्रम उनका फेवरेट प्रोग्राम है, और आपको पता है महिला जगत प्रोग्राम मनन इसलिए उनका फेवरेट है क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें घर गृहस्थी की हर बात होती है, बच्चों की देखभाल कैसे करें, उनका पढ़ाई में ध्यान ना भटके इसके लिए क्या करें, कुकिंग किस तरह से परिवार के लिए अच्छे से करें, सेल्फ केयर किस तरह से करें,

0: तब तक ये सफर अनवरत रूप से चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 90 साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंट वार्ता मनन नारंग से रेणु कोटनाला की बातचीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में, फिल्म तीसरी कसम से।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीसरी कसम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत हमने लिया है फिल्म एक कली मुस्कुराई से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म एक कली मुस्कुराई से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फकीरा से, स्वर लता मंगेशकर का है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म फकीरा के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। कंट्री वाइड और इनसाइड से दोनों ही कार्यक्रम हम रात्रि 9:30 पर अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा माधुरी बड़तवाल का लिखा नाटक बंदी। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वाली। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा कल रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर। गीत संध्या कार्यक्रम कल रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनेगा विविध कलाकारों की गाई नात। छाया गीत कल शाम 7 बजे। कानूनी सलाह के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे एडवोकेट खुर्शीद मोहसिन जैदी से एसके नोटियाल की बातचीत। विषय होगा कैसे मिले आम आदमी को शीघ्र न्याय। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनेगा गन्ना किसान भाइयों की गन्ना फसल संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा स्वरोजगार का महत्व और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम आपका सितारा लव स्टोरी और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विषय में। फिल्मी कव्वालिया सुनेगा कल दोपहर 2:30 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी के गाय कुमावनी लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में 1:15 पर क्रम होगा थारी पसंद। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर सुनेगा विदुषी परवीन सुल्ताना से गायन आप प्रस्तुत करेंगी राग शुद्ध सारंग। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम कल दोपहर 12:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप 11:30 पर। चित्रपट संगीत 11 बजे। जागरूक श्रोता कार्यक्रम कल सुबह 10:30 पर और 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुहाना सफर। ये थे हमारे आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई है। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया

0: और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 400,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 होने को है।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राशिद बदर साबरी और साथियों की गायी कव्वाली और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम की अगली कव्वाली।

बादशाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपनाह अस्तु हुसैन, सरदादु नदाद दस्तु दर दस्ते यजीद।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे राशिद बदर साबरी और साथियों की गायी कव्वाली। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में,

अलका याग्निक की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गीत जो हमने लिया था फिल्म दिल क्या करे से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बीवी नंबर वन से आवाजें हैं कुमार शानू और हेमा सरदेसाई की। संगीत अनु मलिक का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

बीवी नंबर वन का भी ये गीत अब आपने सुना, और आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म बॉर्डर से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

फिल्म बॉर्डर का गीत अभी आपने सुना रूप कुमार राठौर की आवाज में। और श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बॉबी से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म बॉबी का ये गीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म दिल का रिश्ता से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों का संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखे हैं समीर ने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों की युगल आवाजों में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल का रिश्ता से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों की आवाजों में।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल का रिश्ता से कुछ गीत। और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत जसपिंदर नरोला और साथियों की आवाजों में।

0: जसविंदर नरूला और साथियों के गाए फिल्म दिल का रिश्ता के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुने फिल्म दिल का रिश्ता से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और गीत लिखे थे समीर ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब 36.63

0: बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो

0: अलिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
3: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
4: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
3: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग

0: के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and

0: जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और एक यूटी में, और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक्स के भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-on-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को, प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए हैं इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसिमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है। इसलिए है कि वहाँ पे एक बिन्स प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ARG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल सके फिर उसका गांव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेख, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी है जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म है लाइटनिंग है वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहा है और सैटेलाइट के इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: कंट्री वाइड।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10

0: मैं आ गई दी।
1: आ गई?
0: आहा, कितनी सारी घास। कौसा दी, मुझसे तो घास जल्दी जल्दी नहीं काटी जाती। तू कितनी अच्छी है।
1: अच्छा,
0: यदि तू मेरे लिए घास ना काटे तो मैं तो रीति ही जाऊं घर।
1: देख, मोटा मोटा घास तू काटना, और एक बात सुन, पेड़ों को बचा लेना। ये खिराल का पौधा है ना, तो वो मालू का, और देख ये बांझ है, और ये बुरांस का, और वो देख रही है ना, वो है तिमले का। इसको पैरों से कभी मत दबाना, और घास के साथ साथ इसे मत काट देना। यही तो बड़े होकर विशाल पेड़ बनेंगे।
0: अच्छा किया तूने बता दिया दीदी, वरना मेरी तो अकल ही मोटी है। वो सामने देख दीदी, लीला तो पेड़ भी काट रही है।
2: अरे लीला,
1: सुने तो। आ रही है कोई आवाज
0: दीदी? हमें तो कोई भी आवाज नहीं आ रही।
1: वे चारों ओर सन्नाटा है, बस पक्षियों की आवाज, और हाँ ये लंगूर जरूर कूद रहे हैं। अब इसके अलावा तो कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। अब लंगूरों को यहाँ से भगाने का इरादा है क्या? चढ़ी होगी, और जब बड़ा सा गट्ठर हो जाएगा ना, तभी नजर आएगी वो। और तुम सब की तो लगता है बैसाखी की तरह गिग्गी बन गई है, और बाहर से दिलेरी का नाटक कर रही हो। क्यों, मैंने झूठ कहा कि सच?
0: सच।
1: और क्यूरी गैनी, तेरे मुंह पर क्यों ताला लग गया भला? आज तो तेरा गीत वीत भी नहीं हुआ।
3: दीदी, मैं तो तुम सब की बातें सुन रही थी। दीदी, सच बात तो ये है कि मुझे ना शेरबाग से बहुत डर लगता है। दीदी, मैं तो ना गीत गाकर अपना डर भगाती हूँ, ताकि तुम सबको मेरी आवाज सुनाई देती रहे। और दीदी, अगर मैं चुप रही

0: मुझे बाग ले गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गहने कहाँ गए।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, अब शाम होने वाली है, जल्दी से गट्ठर बांधो और सुनो सुनो ना गैनी माया, तुमने सुना कुछ? चुप रहो, एक मिनट चुप रहो।
2: दीदी आवाज आ रही है दीदी,
3: दीदी किसी जानवर की आवाज लगती है।
4: आ रही है दीदी, आवाज आ रही है।
0: अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा
2: दीदी, अब क्या होगा
3: दीदी, हमें तो डर लग रहा है दीदी।
0: क्या होगा दीदी?
3: दीदी ये तो भालू की आवाज है,
2: घर चलो जल्दी वरना खैर नहीं है, घास वास यहीं छोड़ो और भागो।
1: ओहो डरो मत तुम लोग, भालू अभी बहुत दूर है, जल्दी जल्दी गट्ठर बांधो और चलते हैं।
5: अब मान गए ना मेरी सच?
1: अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी ही बात सच निकली। चलो असली डरपोकों का पता तो चला है, अब मजाक छोड़ो और चलो चुपके चुपके। भालू को हमारा पता चल गया तो सबके सब मारे जाएंगे। चलो जल्दी से, भालू नीचे की तरफ जल्दी जल्दी नहीं भाग सकता है।
0: क्यों दीदी?
1: हरी इसीलिए कि उसका मुंह जब नीचे की ओर झुकता है ना, तो उसकी आंखों पर बालों की एक झालर सी पड़ जाती है।
0: अच्छा,
1: और इसीलिए उसे दिखाई नहीं देता। ऊपर को देखने पर बाल पीछे होते हैं, इसलिए आराम से देखता है और जल्दी जल्दी भागकर अपना शिकार पकड़ लेता है।
0: सच दीदी? दीदी आवाज नजदीक आती जा रही है दीदी, भालू हमारी गंध सूंघ लेगा दीदी, अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा?
1: अरे घबराओ मत, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो।
2: चलो जल्दी दीदी, दीदी आगे मैं जाऊंगी।
0: दीदी मुझे बीच में कर लो दीदी,
2: बीच में कर लो दीदी, मैं आगे ही रहूंगी।
1: ओह ठीक है माया ठीक है, तुम सबसे आगे चलेगी और मैं सबसे पीछे, बाकी सब बीच में।
2: ठीक है
1: अब जल्दी चलो।
3: कौसा दी, कौसा दी, बिंदी कहाँ होगी?
1: अरे बिंदी की चिंता तुम मत करो, बिंदी तो घर पहुंच गई होगी, वो तो बहुत फुर्तीली है, और उस दिन की तरह जो दूसरा रास्ता है ना, अरे वही गधेरे वाला, वहीं से घर पहुंच गई होगी वो।
0: अच्छा
1: जल्दी चलो। जंगल का रास्ता तो कट गया, अब हम अपने खेतों में आ गए हैं।
0: हाँ दीदी।
3: कौसा दी, अब वो भालू क्या कर रहा होगा?
1: अपना खोपड़ा पीट रहा होगा, क्योंकि तुझे नहीं मिली उसे, चलती है देखने।
2: दीदी बताओ ना, अब वो हमारे पीछे तो नहीं आएगा ना?
1: अरे नहीं भाई नहीं, अब हम अपने घर के पास आ गए हैं, अब कोई डर नहीं है।
6: अरे ले माया, तेरा घर तो आ गया।
7: लीला जा लीला।
8: हाँ दीदी मैं जा तो रही हूँ, पर एक बात तो सुनो सब। अरे भाई भालू वाली बात घर जाकर मत बताना।
3: हाँ ठीक कहा,
8: नहीं तो कल को आएगा।

0: कौसा कौसा, अरे दरवाजा खोल।
1: अरे सोहन बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ?
0: चाचा जी, ये कौसा कहाँ है?
1: बेटा कौसा तो खाना खा रही है। आ बैठ, मेरे पास बैठ, तेरी चाची ने आज तूर की दाल बनाई है।
0: नहीं नहीं चाचा जी, बिंदी अभी तक जंगल से नहीं आई।
1: क्या कहा, बिंदी अभी तक नहीं आई?
0: और ये कौसा कब आई?
1: अरे कौसा को आए हुए तो एक घंटा हो गया बेटा।
0: एक घंटा? चाचा जी जरा कौसा को बुलाओ तो।
1: कौसा कौसा, देख सोहन।

0: इधर तो आ जल्दी से।
1: जी पिताजी।
2: सोहन भैया, तुम कब आए? क्या बात है भाई जी?
3: कौन सा? बिंदी अभी तक जंगल से घर नहीं आई।
2: हे? क्या कहा? बिंदी अभी तक नहीं आई?
3: तो क्या बिंदी तुम्हारे साथ नहीं थी?
2: नहीं नहीं भैया, हमारे साथ ही थी बिंदी, लेकिन इसकी आदत है कि जंगल में जाकर वो अकेले ही घास काटती है, सो आज भी अकेले ही चली गई थी, वहीं पर घुड़किन की पहाड़ी पर।
3: घुड़किन की पहाड़ी पर
2: क्यों नहीं आई बिंदी? कहाँ गई होगी वो? कहीं पहाड़ से नीचे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बड़ी दिलेर है और समझदार भी है।
3: ओह, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अच्छा, मैं चलता हूँ।
4: गांव के सभी लड़कों को भी बुला ले बेटा, हम सभी चलते हैं बिंदी को ढूंढने के लिए। तू फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा।
3: कौन सा? जरा ठीक से बता तो, बिंदी किस तरफ गई थी?
2: भैया, हम यहाँ से जामुन के पेड़ के बगल वाले रास्ते से घुड़किंद की पहाड़ी पर चढ़ गए थे। और भैया, हम लोग दोनों जहाँ पर वो मोटा सा साल का पेड़ है ना भैया,
3: साल का पेड़,
2: हाँ, पहाड़ी के बीच वहीं पर घास काट रहे थे भैया। अब चुप। और ना बिंदी जो थी ना भैया, कह रही थी अपनी भैंस के लिए अच्छा अच्छा घास लेकर आएगी, वो पीली छछरी।
3: पीली छछरी?
2: पीली छछरी वो पहाड़ की चोटी पर ही है ना, जहाँ पर सीलन भी है।
3: हाँ हाँ, वो सीलन वाली जगह, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, हम वहीं चलते हैं। चाचा जी, मैं गांव के और लोगों को बुला लाता हूँ, आपके पास टॉर्च तो होगी?
4: बेटा, टॉर्च तो है मगर उसमें सेल नहीं है बेटा।
3: तो फिर मैं लालटेन ही ले आता हूँ।
4: लालटेन तू ले आ, लेकिन मुझे याद आ रहा है बेटा, तेरी चाची की संदूकड़ी में सेल जरूर होंगे, मैं देख के लाता हूँ।
2: बिंदी, बिंदी, मेरी प्यारी बिंदी, तू कहाँ गई? कितना घमंड था मुझे तुझ पर। हरी पगली, तूने कोई दुस्साहस तो नहीं किया? हरी बिंदी, मेरी प्यारी भुली, कहाँ है तू? अब तो आसमान तारों से भर गया है, अब तक भी नहीं आई तू। कहीं वो भालू?
5: नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता।
2: उस पहाड़ी के पीछे जो चट्टान है, कहीं उस चट्टान पर से। बिंदी, नहीं, उस दिन भी तो बाघ से लड़ने को तैयार हो गई थी, कहीं बाघ नहीं? ओह नहीं, छछरी काटने गई थी, वहां तो बाघ की गुफा है।

0: अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बहन का।
1: सोन भैया देखो यहाँ घास बिखरा हुआ है।
0: हाँ, हो सकता है यहीं पर घास काटा होगा मेरी बहन ने। चाचा जी, बहन जी, मेरी बहन को कहीं बाघ किया किसी जानवर।
2: अरे नहीं सोहन बेटा, बाघ ले जाता तो कम से कम वो चिल्लाती तो सही, और उसकी सहेलियों को कुछ तो पता चलता बेटा।
0: नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका चिल्लाना तो जंगल में ही खो गया होगा, उसकी सहेलियां तो पहाड़ी की दूसरी तरफ थी।
2: नहीं बेटा, मायूस मत हो, अभी ढूंढते हैं, आगे चलो बेटा।
0: इस चट्टान पर भी कुछ नहीं है, चारों ओर सन्नाटा है। चलो बाघ की गुफा में चलते हैं।
1: जरा गुफा के अंदर टॉर्च चमकाना।
3: यहाँ तो सुनसान है भैया, यहाँ भी कुछ नहीं है।
0: सारी गुफा खाली है।
2: सोहन बेटा, अब घर चलो बेटा। जो होना था सो हो चुका, होने के आगे किसकी चलती है बेटा। सारा जंगल हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। और कहीं और चलना चाहते हो तो बोलो।
0: चाचा जी, मेरी बहन कहाँ गई? कहाँ बीत रही होगी उस पर। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरी बहन को मुझसे मिलवा दे बिंदी, मेरी बहन

आज 6 महीने बीत गए हमारी बिंदी को हमसे बिछड़े हुए। अब तो आंखों में आंसू भी खत्म हो गए। सतुरी, हे सुरजी, हिंदू, ए गैड़ी, लीला, सुनो, दूर कोई भी मत जाना घास काटने।

0: दीदी देख तू ना रो, तू रोई तो मुझे भी रोना आ जाएगा दीदी।
1: ना केरी मत रो।
2: ये दीदी,
0: ये कैसी आवाज़ है?
2: ये दीदी,
0: ये किसी पक्षी की आवाज़ है?
2: ये दीदी,
0: कितना सुंदर पक्षी होगा।
2: ये दीदी,
0: पक्षी भी मनुष्य की तरह बोलता है।
2: ये
0: कहीं बिंदी का भूत
2: से कहना दीदी।

0: मुझे यहाँ से ले जाए दीदी, मेरा दम घुट रहा है दीदी। तुम लोग जाओ दीदी, कहीं भालू आ जाएगा तुमको मार डालेगा। जाओ दीदी, तुम जाओ, पत्थर फिर लगा देना।
1: हाँ,
0: अभी नहीं दीदी,
1: अभी नहीं,
0: दीदी अभी नहीं, भालू आ जाएगा दीदी अभी रात को। रात को वो चला जाता है ना दीदी फल लेने के लिए, तब तुम सब लोग आ जाना दीदी। हाँ फिर बताऊंगी दीदी, जल्दी करो, मेरे भाई को बता दो दीदी मैं जिंदा हूँ।
2: मजाक कर रही हो क्या?
3: कमाल करते हैं भैया, ये कोई मजाक है क्या? पूछ लीजिए सबसे।
4: सच भैया, हमारी बिंदी मिल गई है।
5: हाँ भैया, वो भालू की गुफा में बंद है,
4: बंदी बना रखा है उसे भालू ने।
2: क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, बिंदी तो अब तक न जाने कहाँ होगी।
3: सोहन भैया, हमारी बात पर यकीन करो, हम मिलकर आ रहे हैं बिंदी से। चलो ले आते हैं उसको जाकर।
2: क्या चाचा जी को बताया तुमने?
3: नहीं, अभी तो हम आपके पास ही आए थे। चलो अब पिताजी से कहते हैं।
2: चाचा जी, चाचा जी, बिंदी मिल गई।
6: बिंदी मिल गई? अरे कहाँ मिल गई बेटा?
3: वही जंगल में पिताजी, भालू की गुफा में बंदी बनी हुई है।
6: अरे बेटा, इन बावलियों के चक्कर में क्यों आ रहा है? ये तो बिंदी के प्यार में भर आ गई है। बहुत प्यार था ना इनको उससे, इसलिए हर जगह बिंदी बिंदी नजर आ रही है बेटा।
2: नहीं चाचा जी, ये सच ही कह रही होंगी, ईश्वर की माया है, क्या पता कोई चमत्कार हो गया हो। चलो अभी चलते हैं।
3: भैया अभी नहीं, अभी नहीं, बिंदी ने कहा है कि रात को आना, उससे चला नहीं जाता है, बहुत कमजोर हो गई है बिंदी, इसलिए उसे डोली में ही लाना पड़ेगा। और हाँ, ढोल बजाते हुए लाएंगे उसे, जिससे जंगली जानवर पास नहीं आएगा, भालू भी नहीं।
2: तू ठीक कहती है, रात को ही चलेंगे।
5: ठीक, अब हमारी बिंदी आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी,
3: जल्दी आ जाएगी,
5: बिंदी आ जाएगी।
2: अब सब बाहर चलो। अरे इसके देख तो रही हो कि इसके शरीर में जान तक नहीं रह गई है, आराम करने दो अब जरा इसको। बिंदी तुम आराम करो।
0: पानी दे दो भैया, पानी।
2: ये ले पानी, ये ले मेरी बहन। अब मुझे बता, तू इतने दिन कहाँ कैसे रही?
0: भैया उस दिन जब घास काटते काटते मैं गुफा के समीप आ गई थी भैया, तो शाम हो गई थी भैया, वो सामने खड़ा हो गया भैया, मेरे तो डर के मारे आवाज ही बंद गई भैया, उसने झपट्टा मारकर मुझे गुफा के अंदर खींच लिया, और फिर बाहर से वो वाला पत्थर लगा दिया भैया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत चीखी चिल्लाई भैया, किसी ने मेरी आवाज नहीं।
2: चुप हो जा, चुप कर जा
0: भैया, मेरी आंखें तो भैया अधिकतर बंद ही रहती थी भैया, मुझे बहुत डर लगता था भैया, भैया मुझे मुझे भैया कोई चोट नहीं पहुंचाई भैया, उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई, बस बस मुझे बहुत डर लगता था भैया, भैया मैं कहीं बहुत कमजोर हो गई हूँ भैया, मैं कहीं नहीं भाग सकी भैया, पत्थर बहुत भारी था भैया, मैं कैसे हटाती हूँ उसे भैया।
2: तो फिर तू इतने महीनों तक जिंदा कैसे रही?
0: भैया खाने के लिए ना पल पल लाते थे भैया,
2: हम सोचते थे कि भालू तो उज्जड़ होता है, मनुष्य की तरह ही तो होता है भालू।
7: देखो भाई, सब लोग तैयार रहो, भालू इधर बौखलाता हुआ।

भालू थोड़ी देर तक गुर्राएगा, फिर बेहोश हो जाएगा। देखो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, भालू अब आता ही होगा। और अपनी रक्षा के लिए डंडे अपने साथ रख लो। औरतें और बच्चे घरों से बाहर ना निकलें। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, चलो।

0: और ये भालू घुस गया कमरे में, बंद करो दरवाजा, बंद कर दिया भालू, बंद कर दिया।
1: अरे ये था भालू, इतना मोटा बाप रे, अनेक भालू
2: पीछे हट जाए।
3: सोहन बेटा, बस अब वन विभाग वाले भी आने वाले हैं। क्यों सोहन बेटा, मांडू को भेज दिया ना बुलाने के लिए उनको?
4: हाँ चाचा जी, बस अब किसी दूसरे अभयारण्य में इसे भेज दिया जाएगा, जहाँ दूर दूर तक भी मनुष्य की गंध नहीं होगी। अब नहीं बना पाएगा ये भालू किसी को भी बंदी।
5: और भाई गैनी, तुम्हारी चाय का क्या हुआ?
2: चाय तो पहले से ही तैयार है।

अभी आप सुन रहे थे माधुरी भड़तवाल का लिखा नाटक बंदी। प्रतिभागी कलाकार थे जया रंधर, निर्देश त्यागी रजनीश शर्मा, मंजुला नेगी, रजनीश गुप्ता, डॉक्टर एस के जौहर, दर्शन कुमार और माधुरी भड़तवाल। प्रस्तुतकर्ता और निर्देशिका थी माधुरी भड़तवाल, प्रस्तुति सहयोग था रजनीश गुप्ता का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की युगल आवाजों में।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो का गाया गीत अभी आपने सुना। फिल्म गुनाह से इस गीत को संगीत दिया था साजिद वाजिद ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। सुनने की फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। ये पत्र हमें मिला था आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का। इसी गीत को सुनना चाहते थे। गांव भड़बुज्जी से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुप्रिया, दुर्गा परी, सुभाष कपूर, सुषमा कपूर, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे महाराज रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। गीत को संगीत आरडी बर्मन ने दिया है और गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने। फिल्म का नाम है खेल खेल में। सुनने की फरमाइश आप सभी की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। इसी गीत के लिए हमें ये पत्र भेजा है डबवाली हरियाणा से जेके बकौलिया, सुनीता बकौलिया, संजय अनिल, मीनू बकौलिया ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जैतिंग विरक और मिका विरक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साज जरानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा जतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो श्रोताओं लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म खेल खेल में से।

खेल खेल में इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में, फिल्म बरसात से। इस गीत को संगीत नदीम श्रवण ने दिया है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी की। गांव जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। और ये कार्यक्रम का मैसेज अगला हमारे पास आया है परिमहल कासगंज से, भेजने वाले हैं आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, एम असलम, सैफी इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली। और इसी गीत के लिए हमें ये मैसेज किया है संदीप मक्कार, ज्योति मक्कार, मन्नत मक्कार, भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया से, गोराया जालंधर पंजाब से ये हमें मैसेज इन्होंने किया था। और इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें मिला था बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। इसी गीत के लिए हमें मैसेज किया था बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग ने। और ये मैसेज हमारे पास आया था शाही मार्केट शिहोरा जिला बिजनौर से, भेजने वाले थे आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, आदिब और कादिर चौधरी का। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी थी रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य।

होगा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम जुझला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा आलिया, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से। भेजने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजीत। और ये मैसेज हमारे पास आया है नई बस्ती गंज डुंडवारा से। भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी का। नलेश्वर नगर नरवेर महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें किया है पीएस नवारकर, निर्मला विशाल नवारकर मलकापुर से। ये मैसेज हम भेज रहा है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महुकर ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बरसात से।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बरसात से। और श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म परदेश से। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी की। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिश्ता रानी, नंदनी और अंजलि। और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें मिला है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख।

दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव का। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर जहर अजहर खान और अजीम खान का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और ये मैसेज हमें आया है करूला मुरादाबाद से, भेजने वाले हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज किया है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नबी, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी ने। और ये मैसेज हमें मिला है अस्तुपुरा जिला मऊ से, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद शादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है राहुल नगर अमर वास्ते से सिद्धार्थ, अपर्णा, प्रणय और प्रतिभा का। और श्रोताओं, ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलसाद हुसैन और फातिमा सोगरा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत ने। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज हमें किया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन अंसारी और शमशूल कमर राही। दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन और समीर मलिक। बीजा मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुनाली यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव और यूनुस खान, साथ में इनके सोफिया खान। और ये अंतिम मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है मजनू का टीला से, भेजने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म परदेश से।

0: और श्रोताओं, प्रदेश के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी